FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़, FM रेनबो तुसे सुन रहे हो, सवेर दे 6 बज रहे ने। आओ दोस्तों, सब तो पहला जानते हाँ अज रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्रामा दा वेरवा ते प्रसारण समा परिचय दे मुताबिक।

एफएम बयान 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेबू तुसी सुन रहे हो स्वेदे 7:03 ने पेशनी हुन तक दिया एफएम न्यूज़ हेडलाइंस।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने पंजाब का दौरा करेंगे और जलंधर समेत सूबे दे विच कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों का उद्घाटन करेंगे। पंजाब अते केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के

नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। सारे लिसनर्स नु एफएम रेबो सुनने वाले नु आकाशवाणी जलंधर, आकाशवाणी अमृतसर दे श्रोतियां नु सवेरे गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। नवी सवेर, नवी उम्मीद, नवा जोश ते इस नवे जोश ते नाल थोड़ी अपनी आर जी अंजली लेके हाजिर हो चुकी है जी गुड मॉर्निंग जलंधर प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम दे विच थोड़ा मेरा साथ बनिया रहेगा पूरे 8:30 बजे तक। बहुत सारिया गल्लां बातां, बहुत सारी जानकारी, विच विच गीतां दा डोज भी जिहड़ा है तुहानू मिलदे रहना। और मैं कहा जी इस सफर दे विच बहुत सारिया गल्लां तुहाडे नाल करनिया ने, बहुत कुछ अज साझा करना है कि आखिरकार अज दी नवीं सवेर जिहड़ी है इह किस उम्मीद किस जोश दे नाल आई है। कई लोग ना असीं देखे कि असीं भी उहनां दे विचों इक ही आ, भई सवेर दा इंतजार करदे ने। कई लोग इह सिर्फ सूरज चढ़न का इंतजार करते हैं, और कई लोग जिहड़े हुंदे ने अपने सुपनियां नूं पूरा करन दे लई, सच नूं उस दे विच तब्दील करन दे लई, अपने अंदर सूरज नूं जगाउण दे लई हर दिन कोशिश करते हैं। उन्हां दे लई ना तां सूरज हुंदा है, ना तां जन हुंदा है, ना तां तारे हुंदे ने, बस एक अपना सुपना हुंदा है जिहनूं उन्हां ने पूरा करना हुंदा है, दिन रात मेहनत करते हैं। पर जिवें सूरज दीआं किरणां जिहड़ियां हुंदीआं ने ना, उह नवीं सानूं जोश, जनून, रोशनी, नवा राह दिखाउंदियां ने ना, उस ही राह ते चलण दी उम्मीद जिहड़ी है हर दिन सानू जगाउंदी है। और हर दिन सवेरे उठ के सानू कुछ नवा करन दी, जिस मंजिल दे वल असीं भज रहे हां, दौड़ रहे हां, हर दिन मेहनत कर रहे हां, उस मेहनत नू कुछ होर चंगे स्टेप्स दे नाल, चंगे कहिंदे मेहनत दे नाल, उस दुगनी रफ्तार दे नाल भज्जण दा जोश जनून भी दिंदी है। कहानियां, कामयाबी दियां कहानियां असीं पढ़दे हां, पर उन्हां नूं लिखण या फिर कह दिए कि उन्हां कहानियां नूं बनाउण पिछे जो लोक हुंदे ने, शख्सियतां हुंदियां ने, उन्हां दी हट तोड़ मेहनत जिहड़ी हुंदी है ना, उह सानूं जाणनी चाहीदी है। सो मैं कहा जी नवीं सवेर हुई है, नवा जोश जनून, इस दे नाल असीं नवीं शुरुआत करनी है। सो नवीं शुरुआत साडे प्रोग्राम दे राही तुहाडी हो चुकी है जी। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਬਸ ਇਸੇ ਹੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ।

0: ਐਫ ਐਮ ਐਂਡ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਡ ਡੇ ਮੈਲੋਡੀਜ਼।
1: पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

नमस्कार दोस्तों, तुसी सुन रहे हो FM रेनबो ते मैं हाँ तुहाडा मेज़बान आरचे रंजीत। स्वागत है तुहाडे पसंदीदा प्रोग्राम मिडडे मेलोडीज़। दोपहर दे इस खुशनुमा सफ़र विच अगले एक घंटे तक सुनांगे मेलोडियस गीत। अज संजीव कुमार जी का जन्मदिन है। अज के इस प्रोग्राम विच सिनेमा दे सदा बहार नगमे जिन्हां दियां धुनां अज भी दिलां नूं सकून दिंदियां ने ओह तुसी सुनोगे। अज दा इह विशेष अंक समर्पित है शहनशाह अभिनव के, शहनशाह भावनाओं के बेजोड़ कलाकार संजीव कुमार जी को। प्रोग्राम की शुरुआत विच तुसी गीत सुन के हटे हो आन दी मूवी तो। लता मंगेशकर ते किशोर कुमार दियां आवाज़ां विच गाया होया गीत, आर डी बर्मन दा म्यूजिक, गुलजार दे लिखे हुए बोल। फिल्म दे विच अदाकार संजीव कुमार दे नाल सुचित्रा सेन। हुण तुसी गीत सुनोगे मौसम मूवी तो। भुपिंदर सिंह लता मंगेशकर की आवाज़ दे विच गाया होया ते म्यूजिक दिता है मदन मोहन ने, गीत नूं लिखा है गुलजार ने। कुछ लम्हे उम्र भर की दौलत बन जाते हैं, यादों के मौसम कभी पुराने नहीं होते।

0: पुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस सुंदर विचार के लिए। जी हाँ, सच है, तन और मन के स्वास्थ्य के लिए योग एक बेहतरीन टॉनिक है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
1: ग्राम चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य जिला बालोद छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर।
0: और छत्तीसगढ़ रूपापाली बसना से हीरालाल जगत, देवेश, ब्रिजेश जगत और एकता लावण्य कश्यप।
1: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन।
0: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से ही प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों की अनूठी और रहस्यमय दुनिया के बारे में।
1: पिछले दो दिनों में हमने जाना था पेड़ पौधों के बीच के संचार की व्यवस्था के बारे में। आज हम बात करेंगे एक और रोचक विषय पर।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम जानेंगे दुनिया के कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जो हजारों हजार वर्षों से जीवित हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये पेड़ मिस्र के पिरामिडों से भी पुराने हैं। और भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता जब अपने विकास के प्रारंभिक चरण में थी, उससे भी पुराने ये पेड़ हैं।
1: जी, ऐसे तो बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन सबसे अधिक ज्ञात वृक्षों में से एक है ग्रैन एबियलो। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसकी आयु 5000 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये लैटिन अमेरिका के चिली देश में है। ये नॉन क्लोनल पेड़ है। अजीत जी, श्रोताओं को ये भी बता दें कि नॉन क्लोनल पेड़ किसे कहते हैं।
0: विमलेश जी, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार नॉन क्लोनल पेड़ उसे कहते हैं जिसका एक ही तना होता है। इसके तने से कई और नए तने नहीं निकलते हैं, यानी ये अपना क्लोन नहीं बनाते हैं। सरल उदाहरण से समझिए, यदि एक आम का पेड़ एक गुठली से उगा और 200 वर्षों या एक निश्चित अवधि तक जीवित रहा तो ये नॉन क्लोनल पेड़ है, क्योंकि इसके तने से कोई और नया पेड़ नहीं उगा। लेकिन इसके विपरीत,
1: क्लोनल पेड़ों में एक ही मूल वृक्ष से कई नए तने और पौधे निकलते रहते हैं। जैसे भारत में मुख्य रूप से पाए जाने वाला बरगद का पेड़, ये पेड़ अपना प्रतिरूप या क्लोन बना लेता है। बरगद की शाखाओं से ही बहुत सारी हवाई जटाएं निकलती हैं। ये भूमि तक पहुंच जाती हैं और उनसे फिर नई शाखाएं निकलने लगती हैं। बांस भी क्लोनल पेड़ों में गिना जाता है, क्योंकि इसके प्रकंदों से कई नए नए बांस के पौधे पनपने लगते हैं।
0: जी विमलेश जी, जब बरगद के पेड़ की बात आई तो मुझे अपने देश के ग्रेट बैनियन ट्री की भी याद आई। ये कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन में स्थित है।
1: बिल्कुल।
0: बताते हैं कि इसकी आयु 300 से भी अधिक वर्ष आंकी गई है।
1: जी।
0: हवाई जटाओं या एरियल रूट्स के कारण ये पेड़ इतना फैल चुका है कि देखने में एक विशाल जंगल की तरह दिखाई देता है। है तो ये एक ही पेड़, लेकिन इसने अपने हजारों क्लोन बना लिए हैं।
1: जी अजीत जी, विशालता की दृष्टि से एक अद्भुत पेड़ है। इसका मूल तना बिजली गिरने से नष्ट हो गया था, लेकिन अपनी हजारों सहायक जड़ों के कारण ये आज भी जीवित है। जी, तो आज हम बात कर रहे थे दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। एक और पेड़ है जिसका नाम है मतुशेलाह। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी आयु लगभग 4850 वर्ष से भी अधिक मानी जाती है। ये ग्रेट बेसिन ब्रिसल पाइन कोन प्रजाति का पेड़ है। ये मानव जाति के अधिकांश लिखित इतिहास से भी पुराना माना जाता है।
0: माना जाता है श्रोताओं कि इस पाइन वृक्ष का अंकुरण संभवतः 2800 ईसा पूर्व हुआ होगा। विमलेश जी, हम बात कर रहे हैं पेड़ों की आयु की, तो हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना भी बहुत रोचक होगा ना कि पेड़ों की आयु भला कैसे आंकी जाती है।
1: जी अजीत जी, पेड़ों की आयु को जानने के लिए कई वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है पेड़ों के वार्षिक वलयों की गिनती। इन वलयों को ट्री रिंग्स भी कहते हैं। आपने किसी कटे हुए पेड़ के तने को यदि देखा होगा कि उसमें कई वलय, छल्ले या रिंग्स दिखाई पड़ते हैं।
0: जी, माना जाता है कि एक छल्ला एक वर्ष को दिखाता है। पेड़ के तने में जितने छल्ले होंगे उसकी आयु लगभग उतने वर्षों की होगी। लेकिन विमलेश जी, फिर तो किसी पेड़ की आयु को जानने के लिए उसे काटना होगा।
1: जी नहीं अजीत जी, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक एक विशेष विधि से तने के भीतर से पतली लकड़ी का नमूना निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। इससे पेड़ों को काटना नहीं पड़ता।
0: और हाँ श्रोताओ, कभी कभी तने की परिधि से भी पेड़ की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। इसके लिए उस पेड़ की वृद्धि की औसत दर का पता लगाना पड़ता है। विमलेश,

0: ये एक और विधि है जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं।
1: जी अजीत जी, बहुत पुराने या विशेषकर मृत पेड़ों की लकड़ी के नमूनों से वैज्ञानिक उसकी उम्र का पता लगाते हैं।
0: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि पेड़ों के वलय मात्र उम्र ही नहीं बताते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी विशेष वर्ष में मौसम कैसा था। चौड़े वाले रिंग्स संकेत देते हैं कि उस वर्ष में अच्छी वर्षा हुई थी, जबकि सकरे वलय सूखा या मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों का संकेत देते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी विश्व के कुछ दीर्घजीवी पेड़ों के बारे में। साथ ही साथ हमने चर्चा की उनकी आयु जानने की विधियों के बारे में। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: आज का प्रश्न है, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर, और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है सबसे प्यारा।
1: हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में भारत भूमि के गौरव और विविधता का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और बताया गया है क्यों हमारा देश सभी अन्य देशों से अनूठा है।

0: भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है सबसे प्यारा, और अब सुनते हैं कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल।
1: इस कार्यक्रम में उत्तर वैदिक काल के बारे में विस्तार से

0: बताया गया है, विशेषकर उस समय की शासन व्यवस्था और संस्कृति की चर्चा की गई है।
1: आर्य लोग जब भारत में आए तो भारत का अधिकतर भाग जंगलों से ढका हुआ था। यहां कुछ लोग पहले से

आर्यों ने उन्हें दस्यु या दास कहा है। आर्य लोग मुख्यतः पशुपालक थे। ये लोग अपने साथ गाय, बैल, भेड़ बकरियां और घोड़े लेकर आए थे। आर्यजन पहले पहले आज के पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ भागों में आकर बसे थे। इस क्षेत्र में सरस्वती नाम की एक नदी बहती थी जिसमें सदा जल रहता था। ये नदी अब सूख गई है। ऋग्वेद की अधिकतर ऋचाओं की रचना इसी नदी के तट पर हुई थी।

इस काल में समाज चार वर्णों में बंटने लगा था। ये वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।

सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना भी इसी उत्तर वैदिक काल में हुई। ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथों की रचना भी इसी समय हुई थी। आर्यों का जीवन घुमक्कड़ी दशा से स्थायित्व की ओर बढ़ रहा था। कृषि अब उनका प्रमुख धंधा बन गया था। आइए चलते हैं उत्तर वैदिक काल के आर्यों की दुनिया में।

0: वो काली गाय कैसे धुली तुमने? ये तो लात मारती है।
1: इसने मेरी काली और लाल दोनों मटकियाँ तोड़ दी है। हाँ।
0: अरे धृताची।
2: हाँ भैया।
0: तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा दूध से भरी मटकी माँ को दे।
2: अच्छा।
1: अरे अरे अरे देवदत्त, तुम उस घोड़े को संभालो, अरे उसने खूटा उखाड़ लिया है।
0: नहीं तात, ये काम आप प्रवाहन को ही सौंपिए, मैं बकरी के इस नवजात बच्चे को संभाल रहा हूँ।
3: अरे भाई ये क्या हो रहा है आज? अभी तक सभी लोग पशुओं की बातचीत में ही लगे हो। इन्हें चराने नहीं ले जाना क्या? तो सूरज भी निकलने वाला है। अरे देवदत्त
0: जी,
3: तुम्हारा वो नया खेत बनाने का काम पूरा हुआ या नहीं?
0: पिताजी बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। वो उस खेत में बहुत झाड़ झंकार थे ना, तो उन्हें काटते काटते हमारी लोहे की कई कुल्हाड़ियाँ टूट गई। यज्ञ दत्त उन्हें

0: ठीक करवाने बढ़इयों और लोहारों के घर गया है, उसके आते ही हम खेत चले जाएंगे।
1: ठीक है ठीक है। और हाँ, तुम वो बड़े बैलों वाली गाड़ी भी ले जाना।
0: जी पिताजी।
1: उसमें रख कर कुछ शीशम के लट्ठे ले आना।
0: ठीक है।
1: टूटे बाड़े को भी ठीक करना है, कल वो काला घोड़ा वहाँ से निकल भागा था।
0: जी पिताजी, गाड़ी तो हमने पहले ही तैयार कर ली है।
1: अरे प्रवाहन।
2: जी पिताजी।
1: तो मुझे बहुत सुस्त और ढीले लग रहे हो।
2: वो पिताजी,
1: अजीत और हरिराज भी ढीले हो गए हैं। तुम्हारे खेतों की जुताई भी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ पता भी है, कार्तिक महीने के भी कुछ दिन चढ़ गए हैं।
2: जी वो
1: तुम्हारे चाचा के परिवार ने तो अपने खेतों में गेहूं और जौ बो भी दिए।
2: पिताजी, हमारे खेत भी गेहूं और जौ की बुआई के लिए तैयारी समझिए, बस एक दो जुताई और करनी है। क्यों अजीत?
3: हाँ हाँ पिताजी, इस बार मैंने बहुत ज्यादा काम किया है और इस साल हमारी उड़द और धान की खेती बहुत अच्छी हुई है। अरे हाँ, अब तक तो हम उसकी कटाई और मड़ाई में ही लगे रह गए थे, क्यों देवदत्त?
0: हाँ हाँ पिताजी।
2: और पिताजी, हम तो अपने साथ हरिराज शत्रु मर्दन को भी ले जा रहे हैं।
3: हाँ।
2: आज हम चार चार बैलों वाले तीन हलों से जुताई करेंगे, खेत बस तैयारी समझिए।
1: नहीं नहीं, हरिराज और शत्रु मर्दन तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे खेतों में।
2: जी,
1: कल हस्तिनापुर जाना है।
3: पर क्यों पिताजी?
1: वहाँ महाराजा अधिराज जन्मेजय ने यज्ञ का आयोजन किया है, इन्हें तो जाने की तैयारी करनी होगी, वहाँ रथों की दौड़ भी होगी।
3: पिताजी, हमारे जाने की पूरी तैयारी हो गई है।
2: जी पिताजी।
3: हमारा रथ और घोड़े दोनों तैयार हैं।
1: बहुत अच्छा।
3: और हाँ पिताजी, हमने अपने घोड़ों को भी खूब खिलाया पिलाया है, और पता है अब तो वो भी बहुत फुर्तीले हो गए हैं।
2: पिताजी, देवों की इच्छा हुई तो रथों की दौड़ में इस बार हम ही जीतेंगे।
3: हाँ पिताजी, हम ही जीतेंगे।
1: देव तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। देखो, तुम लोग अपने साथ कुछ गेहूं, जौ और चावल ले जाना।
3: जी पिताजी।
1: सम्राट ने यज्ञ के अवसर पर भंडारा भी चला रखा है।
3: अच्छा पिताजी।
1: सभी वर्णों के लोग भोजन कर रहे हैं, यही नहीं गुरुकुलों के ब्रह्मचारी, गृहस्थ और साधु सन्यासी भी यज्ञ में बुलाए गए हैं।
3: अच्छा
2: पिताजी, हमने अन्न के साथ साथ महाराज को भेंट देने के लिए माँ के द्वारा बुना हुआ उत्तरीय भी रख लिया है। बहन धृताची ने इस उत्तरीय पर सोने के तारों से बहुत सुंदर कढ़ाई भी की है।
4: हाँ। ये मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है और कौन कहाँ जा रहा है?
1: आओ पुत्री आओ, तुम्हारे ये भाई हस्तिनापुर जा रहे हैं।
4: अच्छा पिताजी, इनसे मेरे लिए सोने के कंगन मंगवा दीजिए ना, सुना है हस्तिनापुर के सुनार बहुत सुंदर कंगन बनाते हैं।
2: चल चल बढ़िया ही कंगन वाली। पिछले वर्ष तो तुझे सोने के कुंडल और हार ला कर दिए थे मैंने।
5: और क्या,
2: अब कुछ नहीं लाऊंगा। हाँ
4: मेरे अच्छे भैया, मेरे प्यारे भैया, देखो मैं तुम दोनों का कितना ध्यान रखती हूँ। मैंने छुपा छुपा कर तुम्हारे घोड़ों को घी भी पिलाया है।
2: अच्छा अच्छा चल ठीक है, ले ही आएंगे। अब तो खुश।
1: अरे ये तो खुश हो गई, पर तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। हाँ, अपने हथियारों को ठीक ठाक करके रख लो।
2: जी पिताजी।
1: कल सूर्योदय से पहले ही चल देना। आजकल इस रास्ते वाले वन में शेरों, चीतों और तेंदुओं का आतंक कुछ ज्यादा ही हो गया है। अंधेरा होने से पहले ही वन पार करके अपनी बुआ के गांव पहुंच जाना।
2: जी पिताजी, हमने लोहे की फाल वाले भाले और लोहे की नोक वाले पैने तीर भी रख लिए हैं, भला हमारे इन तीरों के सामने वो क्या टिकेंगे।
3: और पिताजी, एक परिव्राजक के द्वारा हमने अपने फुफेरे भाइयों को भी सूचित कर दिया है, वो भी हमारे साथ रथों की दौड़ में हिस्सा लेने जाएंगे।
2: भैया, सुना है इस बार रथों की दौड़ में भाग लेने के लिए कौशल, काशी और विदेह से भी रथ आ रहे हैं।
3: हाँ।
2: इस बार कुछ ज्यादा ही बड़ा आयोजन है।
1: हाँ ये तो है।
6: हाँ, हाँ, हाँ, बड़ा आनंद आएगा।
7: और शुरू हो गई रथों की दौड़।

0: इस बार तो हमारा रथ ही जीतेगा।
1: अरे हमने भी पूरी तैयारी की है,
0: याद है पिछले वर्ष रथों की दौड़ में कितना आनंद आया था। मित्र क्या इस बार भी तुम्हारे गांव का वही रथ दौड़ाने वाला आया है?
1: अरे नहीं भाई नहीं, इस बार दूसरा रथ दौड़ाने वाला आ रहा है। गांव में होने वाली प्रतियोगिता में तो उसने सबको पीछे छोड़ दिया था।
0: चलो देखते क्या होता है।
2: सुने सुने सुने, यज्ञ के आयोजन के इस अवसर पर अब प्रारंभ होती है रथों की दौड़।
3: अरे वो देखो
0: क्या बात की दौड़ शुरू हो गई।

0: अरे वो देखो तो रेस शुरू हो गई।
1: अरे क्या बाकी और सजीले सवार है, वाह वाह
0: वाह वाह वाह वाह, देखो देखो वो देखो बीच वाला रथ
2: इस वर्ष के रथों की दौड़ के आयोजन में विदेह का रथ विजेता घोषित किया जाता है।

ये आयोजन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, इसमें राजा की शक्ति की परीक्षा भी होती थी। उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हो रहा था। राजा की शक्ति, पदवी और दबदबा बढ़ गया था। करों की वसूली होने लगी थी। राजकोष में खूब धन जमा होने लगा था। राजकाज चलाने में पुरोहित, सेनापति, रानियां और कुछ अन्य अधिकारी भी मदद करते थे। ग्राम पंचायतें प्रशासन संभालती थी। राजा को गांव से बड़ी मदद मिलती थी। उत्तर वैदिक काल में राजा की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के मौके पर गांव और कबीलों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाई जाती थी। शिक्षा के लिए बालकों को गुरुकुल में जाना पड़ता था। गुरुकुल वनों के शांत और सुरम्य स्थानों पर बनाए जाते थे।

0: कुल के सभी ब्रह्मचारी मेरी बात को ध्यान से सुने, सावधान होकर सुने, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार दे रहा हूं। और समाचार ये है कि आज शाम तक आचार्य शाकल्य यहां पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत का पूरा प्रबंध कर लिया गया है, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन उसी बात को दोहराने के लिए मैं यहां इसलिए उपस्थित हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारे आश्रम की जो प्रतिष्ठा और परंपरा रही है वो सर्वदा बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि स्वागत कार्य के लिए जिस ब्रह्मचारी को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे पूरा करने के प्रयास में तुरंत लग जाए। अंत में मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने मेरी बात को पूरी शांति से सुना और समझा, धन्यवाद।
1: मित्र, कुलपति का आदेश सुना तुमने?
2: कैसा आदेश मित्र? मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई पड़ा। मैं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में ही उलझा था कि आज एक और समस्या आ गई। गुरुजी कह रहे हैं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूरे में से पूरा निकाल देने पर भी पूरा ही बच जाता है।
1: भोले ब्रह्मचारी, अब इस उलझन को छोड़ो और कुलपति के आदेश पर ध्यान दो और आचार्य शाकल्य के स्वागत की तैयारी में लग जाओ। सुना है आचार्य आयुर्वेद आदि अनेक विद्याओं के पंडित हैं।
2: अच्छा,
1: वे हमारे गुरुकुल में कुछ दिन रहकर छात्रों को इन विषयों की विशेष शिक्षा देंगे।
3: अरे वो देखो कितना सुंदर घोड़ा है।
4: अरे हाँ, चलो पास से देखते हैं।
3: हाँ, चलो चलो।
4: अरे देखो कितना अच्छा घोड़ा।
1: वाह, इसकी काठी तो देखो कितनी सुंदर है।
4: इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसे पकड़ लेते हैं। चलो
1: चलो।
3: अरे वाह, अरे अरे, चलो इसे पकड़ लेते हैं।
5: ये पकड़ा।
2: अरे ये कोलाहल कैसा है?
6: छोड़ दो छोड़ दो, ये महाराजा धीराज जन्मेजय का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। तुम्हें इसके मस्तक पर सम्राट का विजय पत्र नहीं दिखा? इस घोड़े की सुनहरी लगाम और काठी तो दूर से दिख जाती है। छोड़ दो,

0: छोड़ दो, शीघ्र छोड़ दो, नहीं तो हमारे तीरों के तीखे प्रहार सहने पड़ेंगे।
1: अरे ये तो हमारे गुरुकुल के एक क्षत्रिय कुमारों ने घोड़े को पकड़ रखा है। अरे अरे इन पर तो सैनिकों की चेतावनी का भी कोई असर नहीं हो रहा है।
2: अरे चलो चलो भाग चले, आचार्य को बता दे, कहीं क्षत्रिय कुमार सैनिकों से युद्ध ही ना कर बैठे।
1: अरे रुको तो सही, अरे देखो देखो
2: क्या
1: आचार्य तो वही पहुंच गए हैं। और हाँ वो देखो आचार्य की आज्ञा मानकर क्षत्रिय कुमारों ने उस घोड़े को छोड़ भी दिया है।
2: हाँ, हाँ। अच्छा हुआ संकट टल गया, अब ये सैनिक इस घोड़े को सारे राज्यों में घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
2: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
2: उनका प्रभाव कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।

0: घुमाकर हस्तिनापुर ले जाएंगे।
1: हाँ।
0: जहाँ अश्वमेध यज्ञ करके महाराज जन्मेजय चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे।
1: हाँ।
0: उनका प्रभाव, कीर्ति और ख्याति चारों दिशाओं में फैल जाएगी।
2: और इसी तरह राजा की शक्ति और सत्ता धीरे धीरे बढ़ती गई।

0: कबीले के सरदार से वो चक्रवर्ती सम्राट बने, फिर उनके बेटे सम्राट बने और फिर उनके बेटे। इस तरह राज पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। उत्तर वैदिक काल धीरे धीरे समाप्त हो गया और ये सम्राट एक काल को दूसरे काल से जोड़ते चले गए।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम उत्तर वैदिक काल, और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: जी हाँ, आप सभी बखूबी परिचित हैं, जानते हैं इसमें या तो नींद आती नहीं है, या फिर नींद कम आती है, या काफ़ी कई बार होता है कि नींद बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि नींद संबंधी विकार हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन दोस्तों घबराइए नहीं, क्योंकि हमने सदा की भांति आपकी समस्याओं के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को आमंत्रित कर लिया है। जी हाँ, और वो भी एक नहीं, दो दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ, यानी कि होम्योपैथी विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, आज होम्योपैथी विषय को लेकर के, होम्योपैथी पर इसके क्या इलाज है, इस विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। नींद संबंधी विकारों यानी स्लीप डिसऑर्डर के लिए होम्योपैथी में क्या क्या इलाज हैं, और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं, जो कि आप सारी जानकारियां ले सकते हैं और सवाल पूछकर अपनी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अपने एक्सपर्ट से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, और आप प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नेहरू होम्योपैथी कॉलेज और हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आपका हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब। और हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीपक शर्मा जी, आप होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। हम आप दोनों का इस विशेष प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं आपका।
1: नमस्कार।
0: और दोस्तों आप इसी वक्त हमें फ़ोन कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा फ़ोन नंबर, है 2342-1080, और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342-1082। नंबर एक बार फिर से हम आपको दोहराई देते हैं, बताई देते हैं, 2342-1080, और दूसरा फ़ोन नंबर है 2342-1082। और हाँ दोस्तों, इन दोनों फ़ोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 ज़रूर डायल कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, यानी कि डॉक्टर से सवाल पूछ सकते हैं और उनका भी जवाब हम देंगे। बस नोट कर लीजिए हमारा नंबर, है व्हाट्सएप नंबर 9868107070। जी 9868107070। तो डॉक्टर साहब, ये जो नींद ना आने की बीमारी है, ये इसमें कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि स्लिप डिसऑर्डर्स कहते हैं, नींद संबंधी विकार कहते हैं, तो वास्तव में ये है क्या, इसमें क्या लक्षण होते हैं?
1: देखिए, जो नींद ना आना यानी कि स्लीप डिसफंक्शन या स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में इंसोमनिया बोलते हैं, स्लीपलेसनेस, तो ये बहुत सारे कारण इसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि बहुत सारे रीजंस हम फाइंड आउट करते हैं, जिसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल यानी हमारे पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं, कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके डिसफंक्शन डिसरेगुलेशन से हो सकते हैं। तो जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली किसी भी कारण, जो भी कारण हो, फिजिकल फैक्टर्स में जैसे सबसे मोस्ट कॉमनली देखा जाता है पेन।
0: जी,
1: अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी क्रॉनिक इलनेस है और उसकी वजह से वो पेन से सफ़र कर रहा है,
0: जी,
1: चाहे वो माइग्रेनस पेन है, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ का अर्थराइटिस का पेन है, चाहे वो कुछ पेशेंट्स जो कैंसर से ग्रसित होते हैं, तो कैंसर का पेन भी बड़ा लिमिटलेस होता है।
0: जी हाँ।
1: तो किसी भी तरह का पेन अगर है किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे बड़ा पहला कारण वो बनता है नींद ना आने का। फिजिकल फैक्टर्स में जैसे कुछ पेशेंट्स अस्थमेटिक होते हैं, सांस की नली में सूजन आने के कारण से ब्रेथलेसनेस होती है, और रात को ये चीज़ें बढ़ती हैं, तो उनके वो भी कारण बनता है नींद के डिसरप्शन में।
0: जी,
1: तीसरा कारण आता है एनवायरमेंटल, यानी आसपास होने वाली कुछ चीज़ें, जैसे बहुत सारा शोर शराबा है,
0: जी,
1: वो भी हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करता है। बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, अगर हम अपने बॉडी को होम्योस्टेसिस यानी अपना वातावरण अनुकूल नहीं बना पाएंगे बॉडी का, तो उसके कारण से भी नींद में डिस्ट्रप्शन हो सकती है।
0: जी जी।
1: कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, अब जैसे आजकल बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एग्ज़ाम स्ट्रेस है, एंग्जाइटी होती है कि कल एग्ज़ाम है, आज हमने कोर्स पूरा किया नहीं किया, सिलेबस कवर हुआ नहीं हुआ, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण बनता है, एंग्जाइटी का कारण बनता है।
0: तो डॉक्टर साहब, तो क्या हम इन सबको एक बीमारी की श्रेणी में डाल सकते हैं, रख सकते हैं, कि सभी जो नींद नहीं आना, जिसके कारण से भी नींद नहीं आ रही है, तो क्या इसे हम बीमारी कह सकते हैं?
1: जी, देखिए, शुरू में तो ये एक लक्षण के रूप में उभर के आता है, लेकिन कुछ लेटर ऑन स्टेजेस में ये

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम के तमाम श्रोताओं को के यानी कमल किशोर का नमस्कार। उम्मीद है दोस्तों आप सब बिल्कुल भले चंगे होंगे और सुख चैन की नींद सो रहे होंगे। और अगर चैन की नींद नहीं ले पाते हैं तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है। भाग दौड़ भरी जिंदगी, मानसिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और डिजिटल उपकरणों के बढ़ते उपयोग से हमारे नींद में खलल पड़ती है।

0: एक बीमारी का रूप धारण कर सकता है।
1: अच्छा।
0: जैसे हम देखते हैं हमारे जो इसकी टाइप्स होती हैं, नार्कोलेप्सी, कैटालेप्सी, और हमारा होता है एक रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप होती है। तो कुछ एक फिजियोलॉजिकली, बेसिकली स्लीप जो है एक फिजियोलॉजिकल पैटर्न है जो हमारे कॉग्निटिव यानी हमारे माइंड के फंक्शंस को नॉर्मल रखती है, हमारी मेमोरी को, हमारे बॉडी के पूरी फंक्शन को एक नॉर्मल रखती है, इम्यूनिटी भी इससे हमारी
1: यानी कि कंट्रोल सिस्टम कैसे
0: कंट्रोल सिस्टम है। 7 से 9 घंटे की नींद हर व्यक्ति के लिए जरूरी है।
1: 7 से 9 घंटे
0: जी, एक अगर अच्छी नींद किसी की है तो ये सारे फैक्टर्स, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसका माइंड अच्छा चलेगा, उसके कॉग्निटिव फंक्शन अच्छे चलेंगे। अगर किसी भी वजह से वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एक पैथोलॉजी में डेवलप हो जाए या चेंज हो जाता है तो वो एक ऐसा कारण बनता है जो कि जिसको हम स्लीपलेसनेस या इंसोमनिया कैटेगरी में एक बीमारी का रूप हम दे सकते हैं।
1: जी डॉक्टर,
0: जो आपने क्वेश्चन किया।
1: जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर दीपक जी, जहाँ नींद की जब बात होती है तो बच्चों की नींद की भी बात होती है, जवानों की नींद की भी बात होती है, और बुढ़ापे में यानी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनकी नींद की, सब तो सबकी अलग अलग नींद की एक प्रक्रिया है कहनी चाहिए, और सबको नींद, किसी को नींद ज़्यादा आती है, खासकर ये देखा जाता है कि जब बुज़ुर्ग होते हैं उनमें नींद कम आती है और खासकर रात की बात होती है, लेकिन बच्चे, अगर हम शिशु की बात करें तो शिशु तो हमेशा सोते रहता है, अगर जवानों की बात करें तो जवान भी कहते हैं कि जवानी में खूब नींद आती है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए सर ने ऑलमोस्ट सारा पार्ट कंप्लीट कर दिया है, लेकिन स्लीप डिसऑर्डर में जिनको स्लीप ज़्यादा आती है वो भी डिसऑर्डर में है। तो
1: अच्छा।
2: आज हमारे साथ ऐसा ना हो कि सिर्फ हम लोग उनसे बात कर पाएं जिनको नींद कम आ रही है, जिनको नींद 9 घंटे से ज़्यादा आ रही है वो भी स्लीप डिसऑर्डर के अंडर में चीज़ें आती हैं।
1: तो डॉक्टर साहब क्या हर किसी को 9 घंटे की नींद आनी ज़रूरी है या उससे कम भी हो सकती है?
2: एवरेजन जो नींद है वो 6 से 8 घंटे की।
1: 6 से 8 घंटे, जी हाँ।
2: आपने सही कहा कि बच्चों में थोड़ा नींद ज़्यादा आती है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है नींद कम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो प्रोसेसर है वो भी तो बहुत ज़्यादा चलता है ना
1: जी।
2: तो जो नींद आना है वो अपना एक पैटर्न है, 6 से 8 घंटे की एवरेजन जो नींद है वो बहुत अच्छी नींद मानी जाती है
1: जी।
2: और जो नींद है वो लगातार, मतलब अगर हम कई वर्षों का एक आंकड़ा देखें तो हम लगभग 5000 साल पहले से अगर अनुमान लगाएं तो हमारी इस समय की स्लीप 1.5 घंटे ऑलरेडी कम हो गई है
1: जी,
2: एवरेजन। तो लेकिन 6 से 8 घंटे की जो स्लीप है वो बहुत अच्छी स्लीप मानी जाती है। हाँ, अभी एक बात आ रही थी कि कब आपको बीमारी है और कब आपको लक्षण है।
1: जी हाँ।
2: अगर आपको हफ्ते में 3 बार स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है, चाहे वो नींद बहुत ज़्यादा आ रही है या बहुत कम आ रही है, और ऐसा 3 हफ्ते तक लगातार हो रहा है, तो इसका मतलब आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उससे पहले पहले आप मैनेजमेंट की तरफ बात कर सकते हैं, जिसके बारे में आज हम ज़्यादातर बात करेंगे कि सबसे पहले क्या करना चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, ये डिसऑर्डर्स जो देखने को मिलते हैं ये कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स कहते हैं? जैसे कि कई बार हम सुनते हैं कि इंसोम्निया है या फिर और दूसरे प्रकार की जो स्लीप एपनिया है, ये सब जो है इस, तो इनमें कुछ फ़र्क है
2: जी,
1: कुछ अंतर है?
2: बिल्कुल, देखिए जहाँ तक स्लीप एपनिया की बात आती है, स्लीप एपनिया एक डीप स्लीप के अंदर एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे कुछ समय के लिए सांस रुक जाती है, जिसमें पेशेंट को नहीं पता लगता, और ये एक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, मतलब आपके नाक के अंदर का जो तंत्र होता है वो काम करना कुछ समय के, कुछ सेकंड के लिए बंद कर देता है। तो स्लीप एपनिया एक थोड़ी डेंजरस चीज़ है, तो इसके लिए तो आपको हमेशा ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है। ज़्यादातर ऐसा जो करते हैं उनके साथ पहले खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं, और इन सब की जो शिकायत है वो हमारे पास अटेंडेंट लेकर के आता है। जैसे वाइफ कहती है कि मेरे हस्बैंड को ऐसा होता है कि 2-3 मिनट के लिए सांस नहीं आती, या एकदम से वो सांस लेना रोक देते हैं, तो ज़्यादातर हमारे पास अटेंडेंट वो लेकर के आता है कि इनको ये तकलीफ है
1: जी।
2: जहाँ तक बात है इंसोम्निया की
1: जी,
2: तो इंसोम्निया ऑलरेडी एक क्रॉनिक डिजीज़ में आता है। इंसोम्निया का मतलब है कि आपको कई दिनों से बहुत लगातार एक सुकून की नींद नहीं मिल रही है। ज़्यादातर पेशेंट आते हैं कि सर हमें नींद नहीं आ रही, लेकिन इंसोम्निया की एक कैटेगरी और है जहाँ पर आपको बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं जिसकी वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपको बहुत सारी एंजाइटी है जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है
1: जी। डॉक्टर दीपक जी और डॉक्टर नीरज जी, हमारे कुछ लिसनर्स हमसे जुड़ गए हैं, पहले हम उनसे बातचीत करते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं कि उनको नींद कैसे आ रही है और उनका समाधान क्या है। जी हेलो।
3: हेलो
1: जी, नमस्कार।
3: आप सभी को नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: और मेरा नाम सपना है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ।
1: जी सपना जी।
3: मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि मुझे बचपन से ही नींद का इश्यू रहता है, इन द सेंस कि रात में नींद आ जाती थी मगर दिन में कभी भी नहीं आती थी, और रात को भी 8 बजे के आसपास आती थी, अगर वो टाइम मिस हो गया तो फिर नींद आने में दिक्कत होती थी, और ये चीज आज तक कैरी ऑन हो रही है, मगर अब जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है, 53 नाउ, तो मुझे मतलब और प्रॉब्लम

0: बहुत ज्यादा है, जैसे बॉडी एक होना आर्थराइटिस भी हो गया है मुझे
1: जी, जी, जी.
0: और तो ये चीजें मतलब क्या नींद से रिलेटेड है, और जैसे अभी भी मैं दिन में सोने की कोशिश करती हूँ तो एकदम डर कर उठती हूँ अगर नींद आ भी जाए. और नींद लाने के लिए भी मुझे आजकल रात को भी कुछ सुनना पड़ता है, वो सुनते सुनते जैसे कोई टॉक शो होता है वो सुनते सुनते मैं तभी सो पाती हूँ. और रात में एक बार अगर मैं वॉशरूम के लिए गई तो फिर मुझे नींद आने में एक एक घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे ऐसे लग जाते हैं.
1: तो डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और ये क्या लक्षण है?
2: हाँ सपना जी, जैसे आपने बताया कि आपकी एज है 53 और आप लगभग पोस्ट मेनोपॉजल एज में चल रही हैं, ठीक है. और आपने कहा कि बचपन से आपकी ये समस्या है कि 8 बजे आप सो जाती थी और दिन में नींद नहीं आती थी. अगर आपका पैटर्न ऑफ स्लीप बचपन से ऐसा चलता रहा है कि 8 बजे सो करके आप 5 बजे 6 बजे उठ रही हैं, या मॉर्निंग में जितने भी घंटे सो रहे हैं, तो आपका अगर 6 से 8 या 8 से 9 घंटे की नींद चलती रही है तो आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल. और अब जैसे आपने कहा कि बॉडी एक आर्थराइटिस वगैरह हो गया है, तो जैसे मैं अपने पहले इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि कुछ कारण ऐसे होते हैं कि अगर आपको पेन है बॉडी के अंदर तो क्या होता है कि पेन के कारण से भी नींद डिस्टर्ब रहती है. अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस का पेन भी या तो मॉर्निंग में बढ़ता है या कई लोगों को रात को बढ़ता है, तो वो कारण भी हो सकता है. दूसरा, आपने कहा कि जैसे वॉशरूम जाने के बाद आपको नींद नहीं आती है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है कि एक बार वॉशरूम गए और उसके बाद नींद टूट जाती है. तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप ज़रूर किसी भी चिकित्सक से, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, परामर्श करें. हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो कि आपका ये एरिया, जो ये इशू है कि वॉशरूम के बाद नींद नहीं आ रही है और माइंड में विचार चलते जाते हैं. क्या होता है कि मॉर्निंग में फिर आपको कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, थॉट्स आते रहते हैं, तो उन थॉट्स के कारण से भी नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है. और डर के उठने वाली जो बात है, ये नाइट टेरर्स के नाम से हम लोग मानते हैं कि कई बार कई बच्चे होते हैं जो कोई सपना देखते हैं या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई डर बैठा हुआ है, वो डर किसी रूप में आ जाता है सामने और वो एकदम हड़बड़ाहट के साथ, डर के चीख के साथ उठते हैं. तो इसके लिए आई थिंक यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर. आप अगर होम्योपैथी में आना चाहें तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे अच्छे इसके सुगम इलाज हैं, संभव है और संभवतः आपका यह जो रोग है जड़ से ठीक हो सकता है. जी
1: जी सपना जी जी, और कुछ प्रश्न?
0: नहीं बस, थैंक यू सो मच.
1: जी थैंक यू सो मच, आपने कांटेक्ट किया. डॉक्टर साहब, इससे पहले हम बातचीत कर रहे थे स्लीप एपनिया के विषय में, इनसोमनिया के विषय में. जी, स्लीप एपनिया में कई बार यह देखा जाता है कि सांसें रुक जाती हैं, तो वो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. वैसे डॉक्टर साहब, मुझे भी कई बार ऐसे फील हुआ है, लगता है कि सांसें रुक जाएंगी और सांस नहीं ले पा रहा हूँ. तो क्या ये क्रॉनिक डिजीज़ है? लेकिन ये काफ़ी साल भर के बाद में, 6 महीने में ऐसे कुछ होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. तो क्या एक ये क्रॉनिक डिजीज़ है और इसका भी कोई इलाज है?
3: सर बिल्कुल इलाज है, लेकिन सबसे पहले उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है. और जब भी कभी हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, जैसे आपने कहा कि कभी कभी होता है
1: जी,
3: तो जो कभी कभी होता है उसमें भी कैटेगरी होती है कि महीने में एक बार है या 3 महीने में एक बार है. अगर वो कई महीनों में एक बार है तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा वरी की ज़रूरत नहीं है. बस हम सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ी नेजल एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे भी काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाएंगी. असेसमेंट के लिए हमें एक एक्सरे और कभी कभी एक स्लीप स्टडी की जरूरत पड़ती है ताकि हम ये पता लगा पाएं कि आखिर वो किस फेज में हो रहा है. दूसरा, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर अटेंडेंट से लेनी पड़ती है कि वो किस टाइम हो रहा है
1: जी.
3: अब होम्योपैथी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी मेडिकल साइंस है जहाँ पे सिर्फ अगर 2 बजे प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी अलग दवाई है, रात को 3 बजे हो रही है तो उसकी एक अलग दवाई है. तो होम्योपैथी जो सिम्टम बेस्ड है, बहुत सारे आपने देखा होगा ना कि होम्योपैथी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें वो दवाई का चयन करने के लिए बहुत सारे सिम्टम्स को लेना पड़ता है.
1: डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, बड़ी नई बात बताई कि टाइमिंग के अनुसार आप उसे ट्रीट देते हैं.
3: ये पूरी दुनिया में सिर्फ होम्योपैथी के साथ है कि अच्छा, आपको हर एक टाइम स्पेसिफिक दवाइयां जो हैं वो सिर्फ होम्योपैथी में ही मिल सकती हैं.
2: मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इस बारे में कि होम्योपैथी ही एक ऐसी पद्धति है जो टेलर मेड एक पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है. जैसे कि किसी भी व्यक्ति का जो शर्ट साइज है वो दूसरे को नहीं आ सकता, किसी का 40 साइज है, किसी का 42 है, किसी का 44 है. तो इसी तरीके से हर दवा एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक के लक्षण अलग हैं, हर एक के जो स्लीप से जुड़े हुए संबंधी जो मोडेलिटीज़ हैं
1: जी.
2: जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि 2 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, तो टाइम मोडेलिटीज़ के हिसाब से भी हमारी दवाइयाँ अलग होती हैं.
1: अच्छा,
2: सो मच सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सबकी अलग अलग है, हमारे जो जीन्स हैं वो सबके अलग अलग हैं
1: जी.
2: तो इन सारे पैरामीटर्स को समझते हुए हम दवाई का चयन करते हैं. कोई भी एक दवाई सब मरीजों के लिए नहीं हो सकती
1: जी, अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग मरीजों के लिए अलग दवाई.

0: ये अलग अलग लक्षणों के लिए
1: जी
0: अलग अलग फैक्ट जो हमारे वेदर कंडीशंस हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम जो है सर्दियों में बढ़ती है, कुछ गर्मियों में कहते हैं बढ़ती है, तो इन सारे लक्षणों को मद्देनज़र रखते हुए हम दवाई का चयन करते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि हम लक्षणों के डिटेल में जा करके उसके साथ क्या जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसके साथ क्या मोडेलिटीज़ हैं, कब बढ़ता है, कब घटता है, क्या कारणों से बढ़ती है, क्या कारणों से घटती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए दवाई का चयन करते हैं, और दैट इज़ 100% ट्रीटेबल एंड क्योरेबल।
1: जी डॉक्टर साहब, अभी कुछ देर पहले फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आते हैं कि स्लीप एपनिया जो है, आपने एक बात कही बीच में, मैंने वो गौर कर रहा था कि इसके कारणों पर पता करना, कारण पता करना पड़ेगा, तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं स्लीप एपनिया के?
2: सबसे पहला जो कारण है वो ओबेसिटी आता है।
1: ओबेसिटी,
2: हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वजन बढ़ाते चले जाते हैं। अब उनका वजन पेट पे तो दिखता है, थाइस पे तो दिखता है, लेकिन अंदर के जो कुछ ग्लैंड्स हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं, तो ओबेसिटी इसमें सबसे पहला कॉज आता है।
1: लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे देख रहे हैं?
2: जी हाँ, नहीं मैं आपको तो देख रहे, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि कई महीनों में या कभी कभी ऐसा होता है।
1: अच्छा,
2: जो ओबेसिटी की तरफ, अगर जैसे आपका वजन भी अगर कुछ समय के लिए बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम आपको रिकरेंट हो सकती है।
1: ओके,
2: और कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो एनाटॉमिकल डिफेक्ट हैं, उसका पता हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करा करके पता लगता है। तो जब तक आपका डॉक्टर असेसमेंट ना कर ले, तब तक आप अपने आप तो कोई दवाई बिल्कुल भी मत लीजिए, होम्योपैथी में तो खासकर।
1: अच्छा,
2: तो जो स्लीप एपनिया के कारण है वो बहुत सारे कारण हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव वाला जो है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कभी कभी सांस रात को रुक जाती है। इसके मैनेजमेंट में हम बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी हम देते हैं, और सबसे मेन काम है उसके स्लीप पैटर्न का नोट करना, मतलब उसको किस तरफ ज़्यादा आराम पड़ता है, लेफ्ट साइड वो ज़्यादा सोता है, लेफ्ट साइड राइट साइड ज़्यादा सोता है, और उसकी एक पोजीशन का पता लगाना, उसकी वजह से भी हम लोग दवाई का डिसीजन लेते हैं।
1: डॉक्टर साहब इससे भी बात पे, क्योंकि आपने लेफ्ट राइट की बात की, डॉक्टर साहब डॉक्टर नीरज जी
0: जी
1: किस ओर करवट लेकर के सोनी चाहिए, कैसे सोना चाहिए?
0: देखिए आइडियली तो हमें लेफ्ट साइड सोना चाहिए, क्योंकि हमारे रात का जो स्लीप है, अगर हम लेफ्ट साइड सोते हैं तो डाइजेशन बड़ा इम्प्रूव होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव होता है।
1: जी
0: राइट साइड में हमारा लीवर है, तो अगर हम राइट साइड सोएंगे तो लीवर पे दबाव पड़ने से जो उसकी सिक्रीशंस हैं वो प्रॉपरली नहीं जाती।
1: अच्छा।
0: तो लेफ्ट साइड अगर हम लेटते हैं तो दैट इज़ द एप्रोप्रिएट पोजीशन, जिसमें हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहता है।
1: अच्छा।
0: और नींद का तो कोई इससे संबंध नहीं है हालांकि, लेकिन जिस पोजीशन में भी कोई भी व्यक्ति, उसका हैबिट होती है सोने की, तो नींद तो किसी भी करवट में अगर इंसान को हैबिट है कि भाई सीधा सो के भी नींद अच्छी आती है तो सो सकता है। लेकिन जिनको ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट साइड की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम कहेंगे लेफ्ट साइड में सोई तो राइट साइड खुलता है, ये देखा जाता है।
1: जी, जी।
0: और अगर राइट ऑब्स्ट्रक्शन है तो मतलब लेफ्ट में लेटेंगे तो राइट साइड खुलेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेटने से वो नाक खुलता है।
1: अगर पीठ के बल सोए तो?
0: पेट के बल सोने में कोई नुकसान नहीं है, पीठ के बल सोने में कोई नुकसान नहीं है।
1: जी,
0: उसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है बढ़ती है, देखा जाता है।
1: अच्छा,
0: तो ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ सकती है अगर पीठ के बल यानी बैक पे लेटा
1: जी,
0: जाए
1: जी।
0: तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो OSA हम मानते हैं टेक्निकली, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे अभी डिस्कस हो ही रहा है, तो ये डायबिटीज़ के साथ भी जुड़ी हुई कंडीशन है।
1: अच्छा,
0: जो क्रॉनिक डायबिटिक्स हैं उनमें भी ये देखा जाता है, जो ओबीज हैं जिनका BMI हमारा 28 या 30 से ज़्यादा है, तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है बॉडी वो अगर ज़्यादा होने से ओबिसिटी है, ओवरवेट है, तो वो भी एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के शिकार होते हैं। तो डायबिटीज़ का भी लिंक इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, नेजल ब्लॉकेज होना, साइनस होना और नाक का बंद होना,
1: जी, जी
0: ये तो कंडीशंस हैं ही हैं। कुछ हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं जो डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके कारण से भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब कई लोगों की आदत होती है कि पेट के बल भी सो लेते हैं, तो इसमें कुछ परेशानी हो सकती है आगे चल करके?
0: देखिए कोई परेशानी सिर्फ डाइजेशन के हिसाब से हो सकती है, बाकी ये हैबिट की बात होती है। अगर पेट के बल कोई सोता है तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, ओनली थिंग इट इज़ ए हैबिट। किसी को पेट के बल सोना अच्छा लगता है एंड ही कैन स्लीप वेरी नाइसली, और कोई राइट या कोई लेफ्ट में या कोई पीठ के बल सोता है, लेकिन अगर उसको तकलीफ बढ़ती है किसी भी स्लीप पोजिशन में लेटने से तो वो उसको अवॉइड करना चाहिए।
1: जी तो डॉक्टर साहब ये सारी बातें हैं, जब सोने की बात आती है तो रेस्ट की भी बात आती है, अगर आप रेस्ट अच्छा करेंगे तो हो सकता है कि नींद आपको अच्छी है। तो डॉक्टर साहब अगर आप कहें तो थोड़ा सा हम भी रेस्ट ले लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: एक गीत के जरिए, ताकि हमारे श्रोता भी खुश हो जाए और शायद आगे चल करके उनको अच्छी नींद भी आ जाए।
0: श्योर, वेरी नाइस।

0: तो डॉक्टर साहब, ये जो नींद ना आने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण, और जिसमें कि अभी आपने सुना इस गाने में सुना कि मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए। देखिए, जब नींद नहीं आती है तो चैन तो खोता ही है,
1: बिल्कुल,
0: और जब चैन खो जाए तो समझ लीजिए कि बीमारियों का घर बन जाता है हमारा ये शरीर।
1: बिल्कुल, ये इंटर रिलेटेड है, चैन नहीं आता तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगा तो चैन नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है।

0: जी
1: जी। तो डॉक्टर
0: रिवर्सिबल
1: साहब,
0: है।
1: स्लीप डिसऑर्डर होने से सबसे अधिक जो खतरा रहता है उसमें क्या क्या हो सकता है?
0: देखिए, सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो ये होता है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन होता है, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ता है। हमारे हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है बॉडी के अंदर, जो बढ़ जाता है और उसके कारण से अगले दिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना और अपना मूड जो है उदास रहना,
1: जी
0: चिड़चिड़ापन तो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो मच सो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ बढ़ती हैं,
1: जी
0: हार्ट पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जिनको नींद कम रहती है या नींद पूरी नहीं ले पाते, उनका इफेक्ट हार्ट पे पड़ता है। तो हार्ट अटैक का आना संभाविक रूप से, आपने देखा होगा कि अर्ली आवर्स में हार्ट अटैक आता है।
1: जी
0: तो ये चीज़ें कुछ संबंधित है नींद के पैटर्न से।
1: जी तो श्रोता मित्रों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज हम स्लीप डिसऑर्डर्स के विषय में बातचीत कर रहे हैं और उसका होम्योपैथिक इलाज क्या है इसके विषय में बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे दो एक्सपर्ट डॉक्टर, प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता जी, आप प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं नेहरू होम्योपैथी कॉलेज एंड हॉस्पिटल नई दिल्ली में, और हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं दीपक शर्मा जी, आप होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। और हम आपको एक बार फिर से अपना नंबर बताए देते हैं जिससे कि आप हमें कॉल कर सकें, आप हमें मैसेज भेज सकें। हमारा नंबर है 2342-1080 और 2342-1082, और इन दोनों नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी कि 011 जरूर डायल कीजिएगा। और व्हाट्सएप के जरिए भी आप इसी वक्त हमें मैसेज भेज सकते हैं, डॉक्टर के पास हम आपकी मैसेज पहुंचाएंगे और आपके जो समाधान है हम उसके विषय में ज़रूर ढूंढेंगे डॉक्टर से। और ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, आप इसे भी नोट कीजिए और इसी वक्त भेजिए अपने मैसेज 9868107070। हम आपके फ़ोन कॉल्स का, आपके संदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो कारण बता रहे थे जिसमें कि आपने बताया दीपक जी की मोटापा, और उसके अलावा डॉक्टर साहब, और दिनचर्या पर भी जो नींद का जो असर होता है वो भी असर हो सकता है, और इसमें किस प्रकार की बीमारी निकल के सामने आ सकती है?
2: जी देखिए कमल जी, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ
1: जी।
2: कि आपकी बॉडी ना थके और नींद ना आए तो एक अलग विषय है। मतलब आपकी बॉडी पूरी तरह से, फिजिकल बॉडी की बात कर रहा हूँ, मैं मेंटल बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ,
1: जी
2: आपकी फिजिकल बॉडी थकी हुई हो, नींद ना आए, ऐसा कुछ ही बीमारियों में होता है। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि आप कितना थक रहे हैं फिजिकल बॉडी से। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो ऐसा काम करते हैं, जो शारीरिक श्रम करते हैं
1: जी
2: या शारीरिक काम करते हैं पूरे दिन, उनको नींद के लिए कोई अच्छे गद्दे की, कोई अच्छी जगह की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: जी उनको
2: वो
1: नींद बहुत
2: जैसे
1: अच्छी आती है।
2: नींद बहुत अच्छी आती है और वो सुबह बहुत जल्दी भी उठ जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपके शरीर का थकना, आपके शरीर का एक रूटीन होना आपकी नींद के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है।
1: जी।
2: आप ऐसा कभी मत सोचिए कि आपने कोई एक टॉफ़ी खा ली या आपने कुछ कोई मेडिसिन ले ली, आपको उससे अच्छी नींद आएगी। नींद अच्छी तभी आएगी जब आपका मन शांत होगा और आप फिजिकली थोड़ा थके हुए होंगे।
1: जी
2: इसलिए कहते हैं कि आपको फिजिकली एक्सरसाइज भी और आपका डेली रूटीन होना। जैसे बहुत सारे मेरे साथ आकर के पोषण पूछते हैं नींद के बारे में कि सर सबसे अच्छा समय कौन सा है,
1: जी
2: तो मैं उनको कहता हूँ कि जब नींद आ जाए शाम के बाद, वही अच्छा समय है। जैसे अभी एक कॉलर थी, उन्होंने कहा कि मेरे को बचपन से ऐसा है कि मुझे 8 बजे नींद आती है।
1: जी
2: तो मुझे
1: जी
2: लगता है भगवान का इससे बड़ा आशीर्वाद तो कुछ हो ही नहीं सकता कि जिनको 8 बजे नींद आ जाती है और सुबह जल्दी उठ जाते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ
2: तो उठने का समय हमारे जैसे पूर्वज भी, आपने सुना होगा कि हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए,
1: जी जी
2: तो
1: अर्ली
2: वो
1: मॉर्निंग।
2: अर्ली मॉर्निंग में वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे नहीं सब एनिमल्स के बॉडी के अंदर, जो कुछ हार्मोन है जो हमें पॉजिटिविटी देते हैं, वो सिर्फ सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रिलीज होते हैं। इसके बाद जो लोग भी उठ रहे हैं, आप देखोगे जो लोग भी 6 बजे के बाद उठ रहे हैं, वो हमेशा थायराइड, डायबिटीज़, ओबिसिटी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से हमेशा ग्रसित रहेंगे। तो क्योंकि वो हार्मोन रिलीज ही नहीं हुए। तो इसका मतलब आप देखिए, जितने भी हमारे जानवर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो शाम को सब गायब हो जाते हैं
1: जी
2: और सुबह सुबह आपको जल्दी उठे मिलेंगे।
1: यानी कि नेचर के साथ अगर हम चलें।
2: जी अब क्योंकि इंसान शायद चेंज होते जा रहे हैं, है ना, अगर हम तुलना करें तो हम ह्यूमन जो सेपियंस हैं, वो हो सकता है अलग कोई स्पीसीज बन जाए। तो अभी तक जो भी अच्छे इंसानों की कैटेगरी में है, वो सुबह जल्दी उठ रहे हैं।
1: जी।
2: तो ये एक सबसे मेन चीज़ है कि जब आप शाम को, शाम के बाद, मतलब आपको एक शाम का जो मौसम होता है 6 बजे 7 बजे के बाद, उसके बाद जब भी नींद आ जाए आप सो जाओ, और जब आँख खुले उसके बाद 3 बजे 4 बजे, तो आप सबसे अच्छे व्यक्तियों में हो, आपके ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद है।
1: जी डॉक्टर नीरज जी, स्लिप एपनिया पर एक बार फिर से हम दोबारा आते हैं और बात करते हैं कि स्लिप एपनिया में जो जो खतरा है, जो

0: रिस्क हैं वो सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है?
1: देखिए, स्लीप एपनिया से रिस्क फैक्टर सिर्फ ये है कि हमारा जो सांस रुकता है तो इससे हमारा जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेशन है, वो
0: जी
1: उस पर प्रभाव पड़ता है। ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाती है तो उससे हमारा हार्ट रेट पे इफेक्ट आता है। तो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरियाज विच शुड बी टारगेटेड।
0: जी
1: तो इससे यहाँ तक देखा जाता है कि डेथ भी होने की संभावना होती है, खास करके उन मरीजों में जो COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से ग्रसित हैं या क्रॉनिक एस्थमेटिक्स हैं।
0: जी हाँ
1: तो इसको टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये देखते हैं कि जिसके एडिनॉइड्स होते हैं बच्चों के अंदर, एडिनॉइड्स हैं, टॉन्सिल्स हैं, उनके बढ़ने से भी ये स्लीप एपनिया होता है, उनको भी स्नोरिंग की शिकायत हो सकती है और स्लीप रुकती है उनके। और हमारे पास जो ऐसे मरीज आते हैं तो उनको हम बड़े अच्छे तरीके से होम्योपैथिक से टारगेट कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: तो ये मेनली जो है स्लीप एपनिया जो है ये पैथोलॉजिकल बन सकता है और इसका समय पर उपचार, समय पर निदान होना बहुत ज़रूरी है।
0: डॉक्टर साहब एक मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है और इन्होंने लिखा है कि आई स्लीप फॉर 14-15 आवर्स, स्टिल आई फील लेथार्जिक एंड एग्जॉस्टेड। डॉक्टर साहब बताइए।
2: हाँ सर, देखिए मैंने आपको कहा था ना कि ऐसे भी पेशेंट हो सकते हैं जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो जो भी ये लिसनर हैं, आपको रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे काम करिए। मतलब एक ऐसी डिजीज़ जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो सकती है। आप अपने खाने पीने पे, आप अपनी एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान रखिए और किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाकर के तुरंत दिखाइए, ताकि आपका एक शेड्यूल वो नोट कर सकें, आपके सिम्टम्स को नोट कर सकें। 14 से 15 घंटा नींद आना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो आपको डायबिटीज़, आपको हाइपरटेंशन, आपको कार्डियक डिजीज़, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, लेकिन इसका असेसमेंट जो है वो एक डॉक्टर ही कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक होम्योपैथिक फिजिशियन से जाके मिलिए।
0: जी डॉक्टर साहब, एक और मैसेज आया डॉक्टर साहब, डॉक्टर नीरज जी, ये हैं नवजोत गुरु जी हैं और इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि रात को सोने के बाद मेरे दोनों कंधों से लेकर हाथ तक सो जाते हैं, यानी कि शिथिल पड़ जाते हैं। तो ये तो क्या ये भी एक बीमारी हो सकती है?
1: देखिए, ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर ज़्यादा लग रहा है, नींद का तो मुझे नहीं संबंध इससे लगता।
0: जी
1: जो आपने बताया नवजोत जी कि सोने के बाद आपके कंधों से नीचे तक आपका जो सुन हो जाता है, शिथिल हो जाते हैं, तो ये समवेयर कोई नसें दब रही हैं।
0: जी
1: ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है या कुछ और कारण हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ज़रूर अपने निकटतम किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और ये क्यों हो रहा है, आपका एज रिलेटेड भी हो सकता है। क्या होता है कि आपकी एज तो हमें नहीं पता लग रही इस मैसेज से, लेकिन अगर आपकी एज 60 या 60 से ऊपर है तो क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है एक कंडीशन होती है सार्कोपीनिया, जिसमें हमारी मसल्स वीक होती चली जाती हैं, नर्व्स वीक होती चली जाती हैं और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी ये चीज़ें होने को देखने को मिलता है। तो ये आपको रीजन आउट करना है, यू हैव टू कंसल्ट ए फिजिशियन। आप ज़रूर जाइए और उनसे अपना पूरा इवेल्यूशन कराइए कि क्या ये नस दबने से है या आपका सार्कोपीनिया यानी प्रोटीन लॉस की वजह से हो रहा है।
0: जी
1: तो उसको टारगेट उस तरीके से किया जाएगा।
0: डॉक्टर दीपक जी, इन्होंने ये हैं मुखर्जी नगर दिल्ली से अर्चना राजपाल जी, ये कहती हैं कि कभी कभी थका हुआ होने के बाद भी नींद नहीं आती है और मेरे साथ ये होता है कि हफ्ते में एक आध बार नींद 1:30 बजे 2 बजे के बाद आती है, ये बताएं कि हम क्या करें?
2: जी देखिए, ये सबसे सबसे कॉमन क्वेश्चन है। तो देखिए, जब सबसे पहले हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम मुझे लगता है कि जो भी डॉक्टर आपको एकदम से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा है और आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, आपको लाइफस्टाइल के बारे में बता रहा है, वो आपके लिए सबसे बढ़िया डॉक्टर है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप कोई कैफीन का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप शाम के टाइम कोई कॉफ़ी या चाय या ऐसी कोई चीज़ तो नहीं ले रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ जाती है। आपने कहा कि थोड़ा थकान के बाद, मैं कहता हूँ पूरा थकिए, पूरे दिन वर्कआउट करिए। और मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो शाम को 4, 5 बजे 6 बजे भी चाय पीते हैं, उनकी भी नींद साइकिल डिस्टर्ब होता है।
0: अच्छा,
2: तो ऐसा कहा जाता है अमूमन तौर पर स्टडी के 2-3 घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि 6-8 घंटे पहले नहीं पीना चाहिए।
0: जी,
2: और अगर आपको चाय का बहुत शौक है तो आप सिर्फ मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक चाय लें। आप एक बार अपने रूटीन को सुधार के देखिए, कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में ऐसा जा रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोपहर में 2 या 3 घंटे सो रहे हों तो भी आपको रात को नींद जो है 12-1 बजे के बाद आएगी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दिन में सोना बंद करना पड़ेगा और फिर रात को अपने आप नींद आ जाएगी। रात सोने के लिए बनी है और दिन काम करने के लिए बना है।
0: जी, अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब कि आपने कि दोपहर 12 बजे से पहले 1 बजे से पहले ही मैंने चाय वगैरह पीना चाहते हैं तो पी लीजिए और उसके बाद चाय पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद में फिर ये डिसऑर्डर्स में आ सकता है, नींद में आपकी खलल पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और

0: मैसेज आया है, और ये मैसेज लिखा है इन्होंने, संदीप कुमार शर्मा जी हैं, इन्होंने जगह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन कहते हैं कि सोते समय खर्राटे आने के दुष्परिणाम क्या होता है।
1: देखिए, खर्राटे आने का मतलब यही है कि या तो आपकी ओबिसिटी है, आपका वजन ज़्यादा है, या कोई ऐसा क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको खर्राटे के पैदा कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि खर्राटे का लिंक हमारा अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की तरफ जाता है तो
0: जी
1: हमारा डायबिटीज़ को भी हमें रूल आउट करना है। तो डायबिटिक्स के अंदर जो ओबीस डायबिटिक्स हैं, ओबिसिटी भी है और डायबिटीज़ भी है, क्रॉनिक डायबिटीज़, तो
0: जी
1: उनको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो इसका जो दुष्परिणाम है यही है कि आपका सांस रुकेगा, आपको सांस पूरा नहीं जाएगा, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, और बीच बीच में अपने साथ साथ दूसरों को आप तंग करेंगे, जो
0: जी
1: आपके स्पाउस हैं, बच्चे हैं, जो आसपास सो रहे हैं। तो यहाँ तक देखने को मिलता है कि अगर आप रेलवे से जा रहे हैं, सो मच सो फ्लाइट से जा रहे हैं, तो आपके आजू बाजू कोई खर्राटे मार रहा है, तो इट बिकम्स ए रीज़न फॉर डिस्टर्बेंस।
0: डिस्टर्बेंस।
1: तो ये डिस्टरबेंस का कारण बनता है। तो आप जो व्यक्ति खर्राटे ले रहा है उसको तो पता नहीं है, लेकिन जो दूसरा है उसको तकलीफ होती है इसके कारण
0: दूसरे
1: से।
0: तकलीफ होते हैं, लेकिन वो चैन की नींद सोता है
1: जो जो खर्राटे ले रहा है वो चैन के लिए सो रहा है, चैन से सो रहा है, उसको तो पता ही नहीं है।
0: डॉक्टर साहब।
1: तो ये है इसका।
2: एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो मुझे आज तक की अपनी ओपीडी में मिला, एक हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हुआ सिर्फ इस स्नोरिंग की वजह से। तो अगर आप दुष्परिणाम फैलाएंगे तो ये भी एक वजह से आपने सर कहा कि वो
1: चलिए,
2: जो
1: जो भी
2: साथ
1: है,
2: वाला है
1: वॉट
2: वो
1: एवर
2: परेशान होता है।
1: इट इज़ ए मैटर ऑफ लीगल ओपिनियन, हालांकि इस पे हम नहीं जाएंगे।
0: तो डॉक्टर साहब, एक हमारे पास कॉल आ रहा है और उनको भी शायद नींद की परेशानी है, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उन्हें क्या परेशानी। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
3: दोनों डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
0: जी, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार
3: मेरा
1: नमस्कार नमस्कार जी।
3: नाम संजीव कुमार है सर, हरियाणा से बोल रहा हूँ मैं, गांव की सुनिया है, डिस्ट्रिक्ट करनाल है जी।
0: जी
3: अच्छा सर, मैं जो है ना वर्ष 2002 से दिमाग की दवाई खाता हूँ, एलोपैथिक, और कई बारी तो मतलब ऐसी हो जाती है कि रात को मैं सोता ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसी निकल जाती है पूरी रात, और कई बारी नींद बहुत ज्यादा आती है। अब इन्होंने मेरा इलाज चल रहा है कल्प में चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो करनाल में है, और बीपी और शुगर भी है सर, 44 ईयर्स में भी एज है सर, और 102 किलो वजन है सर
0: जी,
3: अब तो। और मेरा भाई है, इसको भी सिज़ोफ्रेनिया की दिक्कत बताई उन्होंने डॉक्टर ने, ये भी इसने परसों पूरी रात निकाल दिया, ऐसे सोया नहीं, और मैं इतना सो गया कि 7 बजे ही सो गया मैं
1: जी
0: तो। डॉक्टर साहब, इनका कहना है कि इन्होंने एलोपैथी का भी इलाज किया, लेकिन इनसे कोई राहत नहीं मिल रही है।
1: जी संजीव जी, जैसे आपने अपनी उम्र बताई 54 शायद
0: जी
1: है,
0: जी
1: और
0: जी
1: आपने वजन बताया अपना 102 किलो, और साथ में बीपी और शुगर की भी बीमारी आपने बताई है,
0: जी
1: तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उम्र तो जो है वो तो है ही है, लेकिन आपका वजन ज़्यादा होने से आपके हाइपर ये टेंशन है, यानी कि बीपी बढ़ा हुआ है, और पीछे साथ में जुड़ी हुई शुगर भी है, तो ये हो सकता है जो कारण, दोनों कारण जो हैं आपके लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। और नींद नहीं आ रही, आपने बताया साइक्लिकल पैटर्न है, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम आ रही है, हो सकता है कम आने के लिए आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जो सिडेटिव्स हों, और सिडेटिव्स अगर देते हैं कोई रात को जो आप कोई गोली खाते हैं तो उसका असर अगले दिन पड़ता है, आपकी बॉडी एकदम डल हो जाती है, और एक समय आने पर के थ्रेशोल्ड जो है हमारा इतना बढ़ जाता है कि एक जैसे 0.25 mg की भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, और जिस धीरे धीरे वो दवाई का जो मिलीग्राम्स है वो आपकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, और एक लेवल पे आके आपको 5 mg की भी दवाई काम नहीं करेगी। तो ये आपको ज़रूर आपने किसी भी स्पेशलिस्ट, अगर आप होम्योपैथी में एक इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप करनाल डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप अपने आसपास ज़रूर एक चिकित्सक, होम्योपैथिक चिकित्सक जो एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो उनके पास जाएं, अपना सारा जो हिस्ट्री है दीजिए, और वो आपका असेसमेंट करने के बाद आपको कोई ना कोई ऐसी दवाई देंगे, ना केवल शुगर और बीपी के लिए बल्कि आपकी जो नींद की जो साइक्लिक डिस्टरबेंस है उसके लिए भी आपको जरूर टारगेट करेंगे। तो यहाँ आपको दवाई तो मैं नहीं बता पाऊँगा, ना ही बताना चाहिए, लेकिन आपको ये जरूर बताऊँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल जरूर सुधारिए, वजन पे टारगेट करिए, शुगर और बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब ऑटोमेटिकली ये चीज़ें कंट्रोल होंगी तो आपको नींद भी अच्छी आनी शुरू होगी। तो आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, उसका परिणाम आपके बीपी के ऊपर भी और शुगर को कंट्रोल करने पर भी रहेगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और फोन कॉल है, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो हेलो, शायद उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब हमारे पास एक मैसेज आया है, वो भी बहुत दूर से मैसेज आया है, और ये हैं जोया जी हैं, और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से मैसेज आया हुआ है।
1: क्या बात है।
0: जी

0: कहते हैं कि डॉक्टर यू मेंशनड कार्टिसोल, इट इज़ ए पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हाउ डज स्लीपलेसनेस इम्पैक्ट ऑन द कार्टिसोल ऑफ ह्यूमन ब्रेन? डू यू बिलीव दैट स्लीपलेसनेस कैन कोज ट्यूमर इन पिट्यूटरी ग्लैंड इन वर्स्ट केस सिनारियो?
1: जी जोया जी, जैसे इफ यू हैव मेंशनड अबाउट कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल इज़ ए हार्मोन विच गेट्स इंक्रीज्ड व्हेन देर इज एंग्जाइटी, व्हेन देर इज स्ट्रेस। वेन एवर देर इज इंक्रीज स्ट्रेस तो कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीजेज, वो बढ़ जाता है। और कॉर्टिसोल जब बढ़ेगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ता है। उसके जो आउटकम्स हैं वो हैं चिड़चिड़ापन का होना, गुस्सा ज़्यादा आना, सो मच सो हमारे को नींद पर भी इसका असर पड़ता है। इट इज़ लाइक दैट कि कॉर्टिसोल बढ़ेगा, नींद में डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। तो आप अगर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट, कोई भी व्यक्ति अगर क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड आउट है तो उसको ये कंडीशन होने की संभावना हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि पिट्यूटरी ट्यूमर जो आप बात कर रही हैं कॉर्टिसोल बढ़ने से डायरेक्ट उसका लिंक है, ऐसा नहीं है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन टाइप एंड अकॉर्डिंगली वी कैन रिप्लाई।
0: डॉक्टर दीपक जी, एक और मैसेज आया हुआ है, ये हैं सौरभ जी हैं भोपाल से और ये स्टूडेंट हैं। कहते हैं कि नींद बहुत आती है दोपहर में, ऐसा क्या करूं कि नींद कम आए? और इनका वज़न है 75 kg और इनकी जो एज है वो है 25 ईयर्स।
2: जी देखिए, एक तो सबसे पहले ये जो 25 वाली एज है, यहाँ पे नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होना एक बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर स्टडी में होते हैं। जैसे अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि बच्चों में एंजाइटी का ज़्यादा फैक्टर है, तो जहाँ तक जब भी कभी ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं या क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप अपने स्लीप का एक पैटर्न बताइए कि वो क्या है। पूरा जरूरी नहीं कि आप डेली नींद ले रहे हैं दिन में, तो आप रात को भी कोई ना कोई पढ़ाई का काम कर रहे होंगे या ऐसा कोई ना काम कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको दिन में नींद आ रही है। अगर आप दिन में नींद नहीं चाहते तो मेरा एक सिर्फ चैलेंज होता है 90 डेज तक आप एक ही स्लीप पैटर्न में रहिए। 91 डेज पे ऑटोमेटिकली आपको सेम डे टाइम पे नींद आएगी और सेम टाइम पे आप उठ जाइए। तो 90 डेज तक आप सिर्फ इतना करिए कि सिर्फ रात को अच्छी नींद लीजिए और दिन में मत सोइए। 91 डेज में विदाउट एनी मेडिकेशन, बिना किसी चीज़ के आपको नींद उसी समय पर आने लगेगी।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार फिर से। हेलो
3: सर,
0: नमस्कार, आपका शुभ नाम?
3: मेरा नाम उमेश है, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा।
1: नमस्कार, नमस्कार उमेश जी।
0: आपकी उम्र क्या है?
3: डॉक्टर साहब मेरी उम्र 44 वर्ष है जी।
0: जी बताएं आपकी समस्या बताएं।
3: डॉक्टर साहब मेरे 4 वर्ष पहले आंखों की रोशनी दोनों की चली गई है। और मैं पहले फील्ड का काम करता था
0: जी, जी।
3: अब मैं बिस्तर पर रहता हूँ जी 4 वर्ष से
0: जी,
3: और सोचता रहता हूँ और मुझे नींद नहीं आती। क्या कोई हल है मेरे? कभी कभी मैं एलोपैथिक की गोली ले लेता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है, नहीं तो मुझे कभी आगे 1-2 घंटे को और फिर नहीं आती
0: जी।
3: क्या करना है मुझे, आप ये बताइए।
1: हाँ उमेश जी, जैसे आपने बताया कि 44 वर्ष की उम्र आपकी है और आपकी 4 साल पहले विजन चली गई है, रोशनी चली गई है, तो दोनों आंखों की रोशनी चली गई है आपकी?
3: हाँ जी, मेरी जो है दोनों आंखों की रेटिना खत्म हो गई, 0 हो गई है, इसका कोई भी इलाज नहीं आया है इंडिया में इस टाइम।
1: अच्छा, कोई बैकग्राउंड डिजीज रही है आपको इसके अलावा, कोई पहले की कोई बीमारी जो क्रॉनिक चल रही हो?
3: ये मेरे जो है रेटिना जन्म से ही खराब आई थी, और एक और मेरे बीमारी नहीं आई है।
1: अच्छा।
3: और अब आई है एक बीमारी सर्वाइकल की लौटने पर।
1: अच्छा, और आपने कहा कि पहले आप फील्ड का काम करते थे और अब आप बिस्तर पे हैं।
3: हाँ जी।
1: और बिस्तर पे क्यों हैं? क्योंकि आपके पास शायद अभी आज की डेट में कोई जॉब नहीं है
0: जी।
3: हाँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, कुछ कर ही नहीं सकता
1: जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जब हमारा आउटकम ही नहीं हो पा रहा, हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई बीमारी की वजह से, अब आप 24 घंटे में से मेजर टाइम जो है बिस्तर पर रहते हैं जी। तो लाजिमी बात है कि नींद का डिस्टर्बेंस तो होना ही होना है, और थॉट्स आपको आते होंगे, डेफिनेट है, जो आपने कहा कि आपको विचार आते रहते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा प्राणायाम, थोड़ा सा जहाँ पर जा सकें आप आसपास किसी व्यक्ति की सहायता से, या खुद भी अगर आप जा सकें तो ज़रूर निकलिए और ज़रूर आप प्राणायाम करिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। और इसमें जो एलोपैथिक का जो आप सेवन कर रहे हैं दवाइयों का, मैं कहूँगा वो ना करें, बजाय उसके कि कोई आप कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पे आएँ जो सेफ़र है, हमारा होम्योपैथी ट्राई करें, वो अच्छा रहेगा। और आप ज़रूर अपने को किसी काम में व्यस्त करने की कोशिश करें, बेशक अगर विजन नहीं है, जो ऐसे भी व्यक्ति हैं जो टोटली ब्लाइंड होते हैं।

0: बचपन से ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसी सीख जाते हैं कोई चीज़ें जो अपने को प्रोफेशनली दे कैन डू समथिंग। तो मैं भी आपको यही राय दूंगा कि कुछ ऐसा कार्य में आप अपने को बिजी करें जो आप कर सकें।
1: तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, क्या कोई आप बता सकते हैं कि मैं किस लाइन की तरफ जाऊं?
0: देखिए ये जो है ना, आप किसी काउंसलर से मिलिए, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज होती हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको किस चीज़ में ट्रेनिंग देने से आप किस फील्ड में जा सकते हैं। तो फ़ोन पे तो ये चीज़ मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप ज़रूर मिलें, किसी से परामर्श करें, काउंसलर से मिलें, डॉक्टर से मिलें, वो ज़रूर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, होप रखें, होपलेसनेस नहीं, ठीक, बिल्कुल आशा रखिए। और अभी तो आपकी और उम्र जानी है, अभी तो 44 वर्षीय है, भगवान करे आपकी लंबी दीर्घायु रहे। तो आप जरूर अपने को व्यस्त करने की कोशिश करें, जो भी काम आपके एज और स्टेज के हिसाब से हो सकता है, जरूर आप निर्धारित करिए कि क्या कर सकते हैं। तो मैं यही राय दूंगा जी,
2: यानी कि अपने शरीर को शिथिल नहीं होने देना है और एक्टिव, मतलब हर काम के लिए कोशिश करते रहना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं बिजी रहें।
0: बिल्कुल,
2: हो सकता है कि आपको नींद अच्छी आ जाए।
0: जी
2: जी डॉक्टर साहब, वैसे हमारे पास और बहुत कम समय है, लेकिन भी क्योंकि हम काफ़ी देर से बातचीत कर रहे हैं और डिसऑर्डर्स के विषय में, स्लीप एपनिया के विषय में, इंसोम्निया के विषय में और भी बहुत सारी बीमारियों के विषय में बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर हम लौटते हैं अपने श्रोताओं के पास।
0: बिल्कुल।

0: रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लौट आए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। और आज हम बातचीत कर रहे हैं समस्याओं के, स्लिप डिसऑर्डर्स के विषय में बातचीत कर रहे हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं दो दो एक्सपर्ट, होम्योपैथी एक्सपर्ट। और तो हमारे पास मैसेज भी आ रहे हैं, आप फ़ोन भी कर रहे हैं। चलिए एक मैसेज लेते हैं। और ये मैसेज आया है सपना बी तिवारी जी का, और ये कहते हैं कि डॉक्टर जी, मैंने अभी सर्कोपेनिया का जिक्र किया और आई वांटेड टू नो कि अर्ली 50s में भी सर्कोपेनिया हो सकता है। मन को शांत करने के लिए कोई रिलैक्सेशन टेक्निक बता सकते हैं?
1: जी सपना जी, जो आपने बताया कि सार्कोपेनिया एक कंडीशन है जो 50 साल में भी हो सकता है क्या, दिस इज योर क्वेश्चन? तो हाँ, ये देखा जा रहा है कि आजकल जो डिजीज़ का पैटर्न है थोड़ा चेंज होता जा रहा है। जो पहले हम लोग टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे कि बीमारी उस एज में होती है, वो आज जल्दी उम्र में भी होने लगी है। तो सार्कोपेनिया बेसिकली एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारा मसल जो है लॉस होना शुरू हो जाता है। और कोई, अगर मान लीजिए किसी को कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन होने के बाद भी ये मसल लॉस होने की संभावना रहती है, तो इसमें प्रोटीन्स कम होते चले जाते हैं। स्केलेटल इनएक्टिविटी के कारण से भी सार्कोपेनिया होता है। तो अगर हम मूवमेंट नहीं रखते बॉडी की, तो उसके कारण से भी मसल लॉस होना शुरू हो जाता है। तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी अगर 50 साल की उम्र में सार्कोपेनिया डायग्नोज हुआ है या आप सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों?

0: हो रहा है, तो आपको चाहिए कि उसके साथ साथ आप प्रोटीन इंक्रीज़ करें, अपनी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करें, मसल स्ट्रेंथनिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, तो ये ज़रूरी है कि इसको आप टारगेट करें। और इनके साथ और क्या प्रश्न था इनका?
1: डॉक्टर साहब, ये
0: हाँ, मेडिटेशन।
1: मेडिटेशन
0: आप ये जानना चाह रहे हैं कि मन को शांत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं।
1: जी
0: देखिए, ओम का उच्चारण, मेडिटेशन, आप अपना ध्यान एक अपने ब्रेथ के ऊपर, ब्रीदिंग के ऊपर रखिए। श्वास अंदर बाहर, जैसे हम इंस्पायर करते हैं, एक्सहेल करते हैं, इनहेल करते हैं, तो उस पर आप फोकस करने की कोशिश करें और मेडिटेशन टेक्निक्स को अपनाएं, और वो ज़रूर है कि आपको ज़रूर इससे लाभ होगा।
1: जी
0: सॉफ्ट म्यूज़िक सुन सकते हैं अपनी चॉइस का, वो भी आपको एक मेडिटेटिव म्यूज़िक की तरफ, अगर आप चाहें तो मेडिटेटिव म्यूज़िक गूगल करें तो आपको मेडिटेटिव म्यूज़िक मिलेगा, तो आप
1: जी
0: उस म्यूज़िक को सुनते सुनते आप रिलैक्स कर सकते हैं।
1: जी
0: और योगा करें, प्राणायाम करें, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मदद करेंगी आपको कहीं ना कहीं शांति प्रदान करने में।
1: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जा रहा है कि जो स्ट्रेस का जो लेवल है, खासकर स्टूडेंट्स में बढ़ता चला जा रहा है,
0: जी
1: वो टेक्निक की वजह से, जो लैपटॉप है, मोबाइल है, इनकी वजह से बढ़ता चला जा रहा है, तो इसमें क्या किया जाए डॉक्टर साहब? क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ जाता है, जैसे कि आप अभी जानकारी दे रहे हैं कि जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो नींद की समस्या, स्लीप डिसऑर्डर्स की समस्या हो सकती है डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल, तो स्ट्रेस का जो रीज़न है, जैसे हमने आपने बात की है कि आजकल जो हमारे जो ये गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, आज की जो कोविड के टाइम पे हमने देखा कि सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमारी ऑनलाइन क्लासेस होने लगी थी, तो इसके कारण से बच्चा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ें जो हमारी क्लासेस हो रही थी वो ऑनलाइन होने के कारण से बच्चों को दिलवाया गया, लैपटॉप या मोबाइल या जितनी भी ट्रांसमिशंस हो रही थी वो उसके द्वारा हो रही थी, तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे आदत के फॉर्म में बन गई। आज की डेट में मैं भी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, सारी चीज़ें हमारी व्हाट्सएप पर जाती हैं, चाहे वो सिलेबस है, वो टाइम टेबल है, या टारगेट ओरिएंटेड कुछ भी बच्चों ने काम करना है तो असाइनमेंट्स हैं, वो भी व्हाट्सएप पर या मेल के थ्रू जाते हैं। तो क्या हो रहा है कि बच्चों का टाइम ज़्यादा इन चीज़ों पर टाइम पास हो रहा है, एंड दे आर हुक्ड टू इट, नॉट ओनली ऑन एजुकेशनल ग्राउंड्स बट आजकल के टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, ऐसी जैसी चीज़ें हैं जो एक से एक देखते चले जाते हैं और वो इंटरेस्ट बन जाता है, एंड दे लूज ऑन देयर स्लीप। तो रात को अगर मोबाइल में कोई भी बच्चा बैठा हुआ है तो उसके लिए एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है, वो नींद डिस्टर्बेंस हो सकती है। दूसरा, अगर मान लीजिए एग्जाम डेज में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो भी एक एंग्जाइटी का रीज़न बनता है कि, और कुछ कॉर्पोरेट्स में जैसे टारगेट्स होते हैं कि इस दिन तक आपने टारगेट अचीव करना है, वो एक एंग्जाइटी का कारण बनता है, उसके कारण से भी इंसान जो है स्लीप अपनी लूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें अपने को, यू हैव टू डिवाइस ए मेथडोलॉजी कि कैसे हम इसको कंट्रोल करें और मैनेज करें।
1: जी डॉक्टर साहब,
2: जी
1: डॉक्टर साहब दीपक जी।
3: हाँ सर, देखिए बहुत बढ़िया बात कही कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर का कारण बनते जा रहे हैं, और हम इस टेक्निक से दूर भी नहीं हो सकते, मतलब अगर हम चाहें आज की डेट में तब भी हम इससे दूर नहीं हो पा रहे,
1: क्योंकि जीवन का एक हिस्सा
3: बन गया है। लेकिन मैं फिर भी सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आपको नींद आए उससे आधे घंटे पहले अपने जितने भी मोबाइल्स, वाईफाई हैं, स्विच ऑफ करिए, और जब आप उठें उसके सिर्फ आधे घंटे तक आप किसी भी गैजेट का इस्तेमाल ना करें। देखिए आपके अपने आप ही नींद का पैटर्न जो है वो ठीक होने लग जाएगा, सिर्फ आधा घंटा पहले और सिर्फ आधा घंटा बाद में। मैं देखता हूँ बहुत सारे तो लोग इतने पहने के जो रात को भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं तो उसको भी देखने लगते हैं, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्लीप डिसऑर्डर में तो ज़रूर आएंगे एक दिन।
1: जी डॉक्टर साहब, जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है, जैसे कि आपने मॉडेलिटीज़ की बात की थी, तो इसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है?
0: देखिए मॉडेलिटीज़ तो एक हिस्सा है हमारे सिम्टम्स को जानने का। अगर कोई केस आता है हमारे पास तो हम पूरा उसको असेसमेंट करते हैं, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसका माइंड, उसका बिहेवियर, उसका उसके साथ जुड़े हुए उसके फिजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उसका पूरा एक अंडरस्टैंडिंग की जाती है हम लोग उसकी केस टेकिंग के अंदर, ज़मीन से आसमान तक, मतलब जिसको कहते हैं पूरा थॉरो एक इन्वेस्टिगेट करते हैं, और उसके अंदर कोई भी सिम्टम है, कोई भी लक्षण है, चाहे वो स्लीप डिसऑर्डर का ही है, तो उसके साथ जुड़ी हुई क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, क्या क्या मोडेलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ है, अगर नींद नहीं आ रही तो उसका कारण क्या है, अगर लैपटॉप या मोबाइल का कारण है तो नेचुरली वी हैव टू गाइड देम कि भाई आप उसको स्विच ऑफ करिए टाइमली, और अगर कोई कारण पेन का है तो पेन को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से नींद का डिस्टर्बेंस है तो हमें उनको बताना है कि आप ज़रूर कंसल्ट करें, बाईपैप या सीपैप लगाया जाता है, और एक पीएचडी स्टडी होती है स्लीप स्टडी जैसे हमने जिक्र किया, पॉलीसोमनोग्राफी स्टडी होती है, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इस व्यक्ति को कहाँ दिक्कत आ रही है, तो उसके हिसाब से हम उनको गाइड करते हैं। गाइडेंस के साथ साथ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना कि स्लीप डिसऑर्डर है या कोई भी बीमारी है तो उसका कारण क्या है और

0: होम्योपैथी में ये चीज़ें हम माइन्यूटली अंडरस्टैंड करते हैं
1: जी,
0: और उसका टोटलिस्टिक व्यू लेते हुए, सो मच सो उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और हमारा एक कंसेप्ट है मियाजम्स के ऊपर, तो वो भी हम समझते हैं कि भाई क्या कारण है और रूट कॉज क्या है, और वो सारे मद्देनजर रखते हुए हम एक दवा का चयन करते हैं और वो पेशेंट को दी जाती है और उससे सक्सेस होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है खान पान पर बड़ा महत्व दिया जाता है और देना भी चाहिए,
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो स्लिप डिसऑर्डर्स है ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं खान पान?
2: देखिए, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कैफीन का, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें कैफीन या उससे रिलेटेड, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ कैफीन ही लिखा हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे खाने में यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। आपका रात का बहुत ज़्यादा खाना

0: तो ये जो स्लीप डिसऑर्डर्स है ये किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं खान पान?
1: देखिए, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था कैफीन का, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट जिसमें कैफीन या उससे रिलेटेड, उससे ऐसा नहीं कि सिर्फ कैफीन ही लिखा हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मिले होते हैं जो हमारे खाने में यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस होते हैं। आपका रात का बहुत ज़्यादा खाना खाना भी बहुत नींद को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आप हिस्ट्रीज उठा कर देखेंगे या अपने आप को भी देखेंगे, तो भूखे पेट नींद अच्छी आती है। जो भूखा पेट होता है वो थोड़ा आराम चाहता है और वो सोना चाहता है,
0: जी
1: तो जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी नींद में भी डिस्टर्बेंस आपकी हो सकती है।
0: जी यानी कि सोच समझ करके संतुलित मात्रा में खानी
1: संतुलित
0: चाहिए।
1: मात्रा में
0: तो
1: जी।
0: डॉक्टर साहब, रात में और दिन में खाने में कुछ फ़र्क तो होना ही चाहिए?
1: हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके लिए फेमस है कि आप ब्रेकफास्ट राजाओं की तरह करो और लंच जो है एक मिडिल मैन की तरह है, और रात को जब खाना है वो एक
2: फकीर की तरह,
1: फकीर की तरह
2: फकीर की
1: करें।
2: तरह
1: तो यही
2: जी
1: एक रूल होना चाहिए, और हमें इंसान बने रहना चाहिए और इंसानों की तरह बिहेव करना
0: जी
2: चाहिए। कैफीन के साथ साथ सर एक छोटी सी बात
0: जी
2: और मैं
0: जी
2: कहूँगा, अल्कोहल,
0: जी
2: ये चीज़ रह गई। जो
0: जी
2: अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति हैं उनका भी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है।
0: जी जी
2: शुरू शुरू में तो नींद ज़्यादा आती है एक टाइम पर,
0: जी
2: लेकिन जब एडिक्शन में चला जाता है तो वो एक ऐसा टाइम आ जाता है कि नींद आना ही बंद हो जाता है।
0: जी
2: चाहे वो एक पैक पिए, दो पैक पिए, तीन पैक पिए, तो नींद डिस्टर्बेंस होती है।
0: जी डॉक्टर
2: तो
0: साहब,
2: इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, अगर लेना भी है तो लिमिट में लें।
0: जी तो श्रोता मित्र, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नींद, अच्छी नींद, अच्छी नींद जो है एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की वो आधारशिला है। यदि आपको लंबे समय से नींद से जुड़ी कोई भी समस्या है तो उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, और सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं और चिकित्सक के यानी कि डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही दवाई लें, खान पान करें, या फिर सोने की जो शैली है या फिर जीवन शैली है उसे रखें। डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और स्लीप डिसऑर्डर्स के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी, श्रोताओं के उत्तर भी आपने दिए, आपने वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
2: नमस्कार,
0: सभी
2: श्रोताओं का
0: श्रोताओं
2: नमस्कार और आपका भी नमस्कार।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर लेकर हाजिर है शाहिद। और यहां पर संदेश टू सोल्जर में हमेशा हम बात करते हैं अपने वीर साहसी सैनिकों के बारे में और उनकी गाथाएं हम सुनते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और हम उनकी जीवनी उनके करियर के बारे में भी जानते हैं और अपने प्रोग्राम में हम उनकी लाइफ में झांक करके उनकी ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं और उनके स्ट्रगल को उनके करियर को उनके जोश और जज्बे को भी हम जानने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में। और आज संदेश टू सोल्जर्स के खास प्रोग्राम में शाहिद आपके साथ। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल SSB, जो राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित हैं और इसके अलावा कई सारे कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस से भी नवाजे जा चुके हैं श्री शिवम कुमार।

सहायक कमांडेंट एसएसबी। तो बहुत जल्द इस गाने के बाद हाजिर होते हैं और मिलाते हैं आपको आपके आज के हमारे खास मेहमान संदेश टू सोल्जर्स के।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स शाहिद आपके साथ और आज के हमारे खास मेहमान हैं संदेश टू सोल्जर्स में श्री शिवम कुमार सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स के हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो पर।
1: धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट सेल और FM रेडियो रेनबो का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमें मौका दिया गया है कि मैं अपने संदेश को पूरे देश और विदेश के सभी लोगों के साथ साझा कर सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप हमारे पास आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके आने का।
1: सर धन्यवाद।
0: आपको बता दें कि श्री शिवम कुमार असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल राष्ट्रपति द्वारा अपनी वीरता, अदम्य साहस, सेवा और उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किए जा चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स, मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशंस सर्टिफिकेट्स तो उनको मिले ही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सर एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं संदेश टू सोल्जर्स में और आपसे जानना चाहते हैं कि सर आपके बारे में हमने जब जाना तो आपने फैशन टेक्नोलॉजी में बैचलर डिग्री हासिल की विद डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो SSB और NIFT तो काफ़ी मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
1: सर इसके बारे में मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि अंग्रेजी के एक पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय।
0: ओके,
1: मेरी कहानी है कुछ ऐसी ही रही है
0: जी।
1: जब शुरुआत से बचपन से तो यूं मैं नहीं कहूँगा कि मुझे फौज में आने का शौक था
0: जी,
1: लेकिन जब मैं नौकरी कर रहा था NIFT के उपरांत तो हमारे सोसाइटी में एक शहीद मेजर नितेश राय थे जो शहीद हुए थे अफगानिस्तान के इंडियन आर्मी के एक मिशन में और उनके सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था हमारे सोसाइटी में जिसमें मुझे होस्ट करने का मौका मिला।
0: अच्छा, तो आप उस जमाने में पढ़ रहे थे?
1: नहीं, मैं कॉलेज के बाद में नौकरी कर रहा था।
0: अच्छा,
1: तो उसके जब उस होस्टिंग के दौरान मुझे उनकी पूरी जीवनी जानने का मौका मिला, उन्होंने क्या क्या त्याग किए हैं देश के लिए इसको जानने का मौका मिला, उनके साहस और शौर्य से वो कहीं ना कहीं मेरे हृदय के किसी कोने में जाके बैठ गई
0: जी।
1: उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी यही करना है, वर्दी तो धारण करनी है देश के लिए और राष्ट्र सेवा में ही
0: जी। तो जो शहीद मेजर थे वो आपके प्रेरणा स्रोत बने और आप फैशन टेक्नोलॉजी से सीधा सशस्त्र सीमा बल।
1: जी बिल्कुल, फैशन से ये सशस्त्र सीमा बल का जो सफर है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: उनको मैं शहीद मेजर नितेश राय को डेडिकेट करता हूँ।
0: क्या बात है सर। सर यहाँ ये भी बताइए हमें शिवम कुमार जी के ये जो सफर आपका रहा, मतलब आपने जैसे कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ा, आपने क्या महसूस किया उस वक्त, जो जज्बा आपका रहा होगा वो प्लीज बताइए।
1: उस वक्त जब मैंने ये जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, उनके महज 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए और उन्होंने देश के जो के लिए जो किया है, तो ये वाकई में एक प्रेरणा स्रोत था मेरे लिए। मैंने देखा कि आपके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जिससे कि आप अपरिचित होते हैं, लेकिन जब आप फौज की नौकरी में आते हैं तो ये विभिन्न आयाम से आप परिचित होते हैं, तो आपको लगता है कि व्यक्ति से बड़ा समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है। इस जज्बे को मैंने पहचाना जब मैं फौज की ट्रेनिंग में आया, जब मैं फौज में आया।
0: क्या बात है सर, देशभक्ति से बढ़कर मोहब्बत कोई नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल।
0: तो फिर आपका ये सफर नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन हासिल करने के बाद एक फैशन ग्रेजुएट बंदा फिर सशस्त्र सीमा बल का एक सिपाही बन जाता है, तो वो सफर अब आगे जब शुरू होता है उसके बारे में बताइए।
1: जी 2018 UPSC में मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद फाइनली मेरा सिलेक्शन हुआ 2020 के जनवरी माह में सशस्त्र सीमा बल एकेडमी में। मैं बतौर डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट वहाँ पे अपनी बेसिक ट्रेनिंग की शुरुआत हुई
0: जी।
1: और एक साल के कठिन परिश्रम के उपरांत, एक साल की कठिन ट्रेनिंग के उपरांत जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग थी मेरे लिए क्योंकि मैं फिजिकली उस टाइम पर बहुत ज़्यादा साउंड नहीं था, उस ट्रेनिंग के उपरांत मैंने जा कर के फिर वो तमगा हासिल किया। मैं असिस्टेंट कमांडेंट बतौर फील्ड में उसके बाद मेरी नियुक्ति हुई।
0: जी जी, तो वो सफ़र जिस तरीके से रहा आपको फैशन एक बिल्कुल ही अलग एक फील्ड हो गई और उसके बाद आप फौज का एक हिस्सा बनते हैं, आप एक फौजी बन गए, एक सोल्जर बन गए, तो वो जो हथियारों के साथ जब आपका एक रिश्ता बना तो वो कैसा महसूस आपने किया? एक आम जनमानस जो है, एक आम इंसान जो है, वो इस चीज़ को शायद आपकी बातों से कुछ महसूस कर पाए, उस जज्बे को।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तो

0: हमें एक चीज सिखाई जाती थी
1: जी,
0: जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी
1: जी,
0: माता और मदरलैंड इससे ये स्वर्ग से भी ऊपर है, और इस चीज को आपके हृदय में, आपके खून में, आपके अंतर मन में अंतर्निहित कर दिया जाता है ट्रेनिंग के अंदर
1: जी।
0: और यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैंने ठान लिया कि आज से मेरी दो माएं हैं
1: जी,
0: एक मेरी माँ अपनी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, और एक मेरा
1: मातृभूमि।
0: मातृभूमि
1: क्या बात है सर, यही जो आपके जोशीले और जज्बात से भरे हुए जो जज्बा है आपका, जो शब्द हैं आपके, आप इस मौके पर, अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके करियर को जानेंगे, आपके अचीवमेंट्स को जानेंगे, आप हमारे जो देश का युवा है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे इसी जज्बे के साथ?
0: जी, मैं देश के युवाओं के लिए एक पंक्ति है जो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा
1: जी,
0: कि देश के युवाओं में अपने आप के अंदर, उसके अंदर पौरुष होना चाहिए। पौरुष सबसे पहले युवाओं में ज़रूरी है, क्योंकि जिसके अंदर पौरुष है, जिसके अंदर पुरुषार्थ है, आप उसी से, आप उसी के प्रति आप अपनी इज्जत रखते हैं, आप उसी के प्रति अपनी सांत्वना रखते हैं। अगर आपके अंदर पौरुष नहीं होगा तो आप समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सब सर्वोपरि है, आप अपने अंदर पुरुषार्थ को धारण करें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो फौज की सेवा में आके हो, या आप वो टीचर बन के हो, या आकाशवाणी की सेवा में जैसा आप कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ होना सबसे आवश्यक है
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन शब्दों के लिए, और हम समझते हैं कि जो आपने बात की बहुत ही सच्ची और बहुत ही दिल से आपकी जो बात निकली है वो दिल तक पहुंचेगी, हमारे माध्यम से भी और आपके जरिए भी, दिल से दिल तक, आकाशवाणी के माध्यम से। आपने जो SSB जब ज्वाइन किया तो आपने बताया कि किस तरीके से आपकी ये शुरुआत हुई, लेकिन आपने इसके अलावा ज्वाइन करने के बाद भी कई प्रोफेशनल कोर्सेज किए, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, और सिक्योरिंग आपने पहली पोजिशन भी हासिल करी थी। उसके अलावा आपने GIS कोर्स किया SSB की अकेडमी भोपाल से, तो वो जो एक कोर्स आपने किया आइडेंटिफिकेशन एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सप्लोजिव, वो कितना, मतलब क्या बहुत ख़तरनाक, बहुत आसान था? क्योंकि देखने में, पढ़ने में नहीं लग रहा कि बहुत आसान रहा होगा।
0: जी बिल्कुल, ये भारत के बदलते सुरक्षा परिदृश्य में
1: जी
0: एक्सप्लोजिव IED जैसी घटनाएं आमतौर पे कई ज़्यादा देखने को मिलती थी, तो बतौर अ सोल्जर ये एक व्यक्ति को ट्रेन होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एरिया में कहाँ एक्सप्लोजिव लगाया जा सकता है, कैसे एक्सप्लोजिव को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन चीज़ों के विषय में इस कोर्स में बताया गया, ताकि उस क्षेत्र की जो जनता है उस क्षेत्र में फोर्स ऑपरेट कर सके और उस क्षेत्र की जनता को सुरक्षित कर सके
1: जी। तो शिवम कुमार जी, हमें ये भी बताइए कि आपने GIS कोर्स, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कोर्स आपने किया, उससे आपकी ट्रेनिंग के लिए और आपकी जो सेवाएं हैं उसमें किस तरीके से आप उसको और बढ़ा सके, सेवाएं अपनी और बढ़ा सके आप?
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जनरली जो हमारा इलाका होता है जहाँ पे कि हम अपनी सेवाएं देते हैं, वो बहुत सुदूर और रिमोट एरियाज में रहता है, तो वहाँ पे हमको एक रेडी टू अवेलेबल एक मैप चाहिए होता है, जिसको कि हम डिजिटली देख सकें और देख सकें कि कहाँ कहाँ हमारी तैनाती हुई है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि हम अपने ट्रूप्स के मूवमेंट पे नज़र रख सकते हैं, वो कहाँ कहाँ हमारी तैनाती है इस पर नज़र रख सकते हैं। इसके लिए GIS कोर्स महत्वपूर्ण है।
1: तो आप ऑलरेडी एक सहायक कमांडेंट थे, उसके बाद भी SSB के ही आप जरिए ये सब कोर्सेस कर पाए, इतना आगे और बढ़ पाए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ा पाए और इम्प्रूव कर पाए, तो इसमें फिर आपको आगे भी इस तरीके के फिर मौके मिले जहाँ पर आप अपनी सेवाएं उस तरह से दें?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हमारे एक जेंटलमैन को वो एक फौजी में तब्दील करती है, लेकिन दैट इज़ द बेस, वो बेस है, फाउंडेशन है, उसके ऊपर आपको लगातार कोर्सेज करने हैं ताकि आप एक हुनरमंद और एक आप एबल ऑफिसर बन सकें, तो इसके लिए सारे कोर्सेज,
1: मतलब आप अपनी निपुणता को लगातार जो है बढ़ाते रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसमें एडिशन करते रहें। इसी एडिशन में आपकी एक बहुत ज़बरदस्त जो आपने ग्वालदाम उत्तराखंड में की कमांडो ट्रेनिंग भी आपने की इन सब के साथ साथ, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा?
0: जी कमांडो जो है वो एक फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से आपको सशक्त बनाता है कि आप विषम परिस्थितियों में, दुर्गम पहाड़, दुर्गम वनों में आप लंबे लंबे ऑपरेशंस कर सकें, अपनी ट्रूप्स को मोराल को हाई रख सकें और ऑपरेशंस में सामरिक रणनीति के साथ ऑपरेशन में विजय हासिल कर सकें।
1: तो सर ये तो ट्रेनिंग बहुत टफ रही होगी, कैसा रहा आपका वो एक्सपीरियंस इस कमांडो ट्रेनिंग वाला?
0: जी बिल्कुल, ये ट्रेनिंग तो टफ होती है, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रेनिंग तो बहुत टफ रहती है, लेकिन आपके अंदर जो वो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा निहित कर दिया जाता है उस्तादों के द्वारा, इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, कि वो समय धीरे धीरे पार हो जाता है और आप जब बिगर पिक्चर की ओर देखते हैं, जब आप देखते हैं कि यहाँ से जब आप तप के जाएंगे, जब आप निखर के जाएंगे यहाँ से, तो फील्ड में इसके कई फायदे होते हैं, जो कि फायदे आज हमें महसूस कर रहा हूँ मैं।

0: सो आपने इतनी सब ट्रेनिंग हासिल करी, आपने अपनी एक बहुत ही एक अलग इमेज, एक बहुत ही बड़ी पोजीशन आपने बनाई, और इसके ही एवज में आपको अपनी सेवाओं के बदले ही बहुत ज़्यादा अवार्ड से भी नवाजा गया, आपको बहुत सारी कमेंडेशंस एप्रिसिएशंस भी मिले, और साथ ही साथ आपने अपनी जो लीडरशिप स्किल थी, ऑपरेशनल एक्सेलेंस थे, और ख़ास तौर पर एंटी नक्सल ऑपरेशंस, उसमें भी आपने न सिर्फ उनको अच्छे से किया बल्कि उनमें निपुणता हासिल करके एक अपनी एक ऐसी पोजीशन बनाई जिसकी वजह से आपको वो रिकॉग्निशन, वो अवार्ड्स, वो मेडल्स से नवाजा गया।
1: जी बिल्कुल, मेरा ये सौभाग्य था कि एकेडमी से निकलते ही मुझे पहली ही पोस्टिंग एंटी नक्सल ऑपरेशंस के थिएटर में मिली
0: जी,
1: जो कि बिहार के लखीसराय ज़िले में था, और क्योंकि मैं झारखंड बिहार से मेरा ताल्लुक़ है
0: जी,
1: तो सन ऑफ सॉइल होने का फ़ायदा मुझे वहाँ पर मिला। मतलब वहाँ पे लोगों की क्या पीड़ाएं हैं, नक्सल का मोडस ऑपरेंडी क्या है, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं विलेजर्स के साथ, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं, ये समझना मेरे लिए ज़्यादा आसान था क्योंकि लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते थे, बीइंग अ लोकल मुझे ये फ़ायदा मिला। और फिर फाइनली जो आगे की रणनीति थी, जो सीनियर्स का सपोर्ट था, उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग हुई।
0: और आगे हम आपसे जानेंगे कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन आपने किए, एंटी माइस्ट ऑपरेशंस भी आपने किए, और बिहार का एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यादगार एक ऑपरेशन था जिसकी ही बदले में आपको उस सेवा की ही एवज में पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया, और हम उसके बारे में आपसे जानेंगे आगे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमारे सुनने वालों के, हमारे श्रोताओं के, आपके लिए। आज के संदेश टू सोल्जर्स के हमारे खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल।

0: भारत तुझे सलाम। देश के नंबर वन रेडियो आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर शाहिद के साथ, और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट खास मेहमान हैं श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर, बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगा एक बार फिर आपका आज के इस बहुत ही स्पेशल शो में, जिसमें जोश से भरपूर श्री शिवम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं।
1: धन्यवाद साहिद जी।
0: और मैं अपने लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप हमें, हमारे पास लगातार आपके मैसेजेस आ रहे हैं, और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, जिन लोगों को अभी तक मैं नंबर नहीं बता पाया था। और आप साथ ही हमारी मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में हमसे हैं जुड़े हुए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हुआ सफर शुरू, बैचलर डिग्री विद डिस्टिंक्शन के साथ श्री शिवम कुमार का, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जिंदगी पूरी तरह से बदल गई और वो बन गए एक जोशीले जांबाज सिपाही सशस्त्र सीमा बल के। सर, आपकी पूरी सर्विस में अभी तक की, आप अभी भी सर्विस में हैं, और सर्विस के दौरान आपकी पोस्टिंग रही SSB एकेडमी भोपाल मध्य प्रदेश में और 32 बटालियन SSB बिहार में, और फिलहाल आप सर्व कर रहे हैं CI & JW स्कूल ग्वालदाम। तो सर, ये जो आप प्रेजेंटली जो सर्विंग है आपकी, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, CI & JW स्कूल में आप क्या करते हैं और ये क्या है?
1: काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ग्वालदाम में, उत्तराखंड में स्थापित है। ये हमारे इन सर्विस ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे कि जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत कई सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसे कि सभी बलकर्मी इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक उस कोर्सेज को पूरा करते हैं, ताकि वो अपनी सेवा में और दक्षता हासिल कर सकें। तो हमारे CI & JW स्कूल ग्वालदम में माउंटेनियरिंग विंग है, जहाँ पे कि मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि SSB की टीम माउंट एवरेस्ट की सीमाओं पर भी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर
0: जी
1: अपना विजय तिरंगा फहरा चुकी है।
0: बहुत खूब सर, क्या बात है।
1: इसके अतिरिक्त वहाँ पे एक्सप्लोजिव की ट्रेनिंग होती है, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है, बहुआयामी ट्रेनिंग सेंटर है ये।
0: तो आप इस ट्रेनिंग सेंटर में एज ए ट्रेनर अपनी सेवाएं दे रहे हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे बतौर इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
0: जी, तो सर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप पहले सर्व कर चुके, उसके बाद फिर आप अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, तो सीखना और फिर सिखाना, इन दोनों में कितना अंतर आप पाते हैं और क्या ज़्यादा कठिन आपको लगता है?
1: मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही का अपना अपना महत्व है।
0: जी,
1: जिस व्यक्ति ने धरातल पर कार्य किया है, जिसे धरातल की जो भी कठिनाइयाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, वो पता है, वह बेहतर तरीके से उसको अपने आने वाली पीढ़ी को या जो भी ट्रेनीज रहते हैं उसको बता सकता है। और यही करने की मैं कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने ग्राउंड में अपने अनुभव से और जो हमारा एक वहाँ पे टेन्योर रहा है उससे सीखा है, उसको ट्रेनिंग्स को बताने की मेरी चेष्टा होती है, ताकि वो ग्राउंड के लिए रेडी बन सके।
0: जी, अच्छा शिवम कुमार जी, हम यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे कि एक जब फौजी बन रहा होता है, तो उसके दिल में क्या अरमान, क्या जज्बा होता है देश सेवा को लेकर के? क्या वो सब चीज़ें चाहता है कि वो जाएगा फ्रंट पर और जैसे दुश्मनों का मुकाबला करेगा, और वो बिल्कुल एकदम बेखौफ होकर के, निडर, बिल्कुल साहस के साथ उनका सामना करेगा, भले ही फिर वो अपनी जान की परवाह ना करे, कुछ भी हो जाए, वो जज्बा कैसा होता है?
1: बिल्कुल शाही जी, इसमें ऐसा है कि जब हम बेसिक ट्रेनिंग के उपरांत धीरे धीरे हमारी नौकरी आदि बढ़ती जाती है
0: जी,
1: तो हमें ये समझ में आ जाता है कि एक फौजी के जीवन का ध्येय वाक्य होता है कि लड़ाई ना तो अधूरी होती है और ना ही अधूरे मन से लड़ी जाती है।
0: क्या बात है।
1: तो एक फौजी अपने पूरा जीवन न्यौछावर करता है, इसी के लिए वो तपता है, ताकि जब मौत सामने नाच रही हो
0: जी,
1: तो फौजी उसका डट कर सामना करे और अपने देशवासियों का, अपने राष्ट्रवासियों का, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा उसे

0: दिया गया है
1: जी,
0: उसे बखूबी निभाए।
1: क्या बात है, ये जोशीले स्वर आ रहे हैं हमारी तरफ श्री शिवम कुमार जो हैं असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सर ये जज्बा और ये जोश आप जो जिस तरीके से हम महसूस कर रहे हैं आपको देख करके और आपसे सुन करके, तो इस जज्बे के साथ ही हमारा युवा अगर इसमें जाना चाहता है तो किस तरीके से आप उसको गाइड करना चाहेंगे?
0: जी, युवाओं के लिए सशस्त्र सीमा बल में जाने के 3 रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर कोई कांस्टेबल लेवल पे भर्ती होना चाहता है तो SSC द्वारा GD की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसकी मैट्रिकुलेशन होती है,
1: ठीक है।
0: इसके उपरांत कोई अगर सबऑर्डिनेट ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर के पद पे जाना चाहे
1: जी
0: तो SSC द्वारा CPO की परीक्षा आयोजित की जाती है जिसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ग्रेजुएशन होता है किसी भी स्ट्रीम में। और बतौर डायरेक्ट क्लास ए ऑफिसर असिस्टेंट कमांडेंट अगर इसमें कोई जाना चाहे
1: जी
0: तो UPSC द्वारा आयोजित सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन करवाई जाती है जिसके लिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है।
1: ओके, जैसे कि आपने UPSC पास करके
0: जी बिल्कुल
1: एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आपने ज्वाइन किया
0: जी बिल्कुल।
1: लगातार हमारे पास हमारे आज के मेहमान श्री शिवम कुमार के लिए यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला लगातार जारी है। शिवम कुमार जी, मैं आपको वो मैसेज पढ़ के सुनाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे आपका जो बहुत ही ज़्यादा एक यादगार मैं कहूँ और वो हर तरह से यादगार एंटी मास्ट ऑपरेशन आपने जो किया लखीसराय बिहार में फरवरी 2022, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कितना क्रिटिकल था वो ऑपरेशन, कितना कामयाब था और कितना खतरनाक था वो ऑपरेशन।
0: जी बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे अपनी नौकरी के पहले 1-2 वर्षों में ही
1: जी
0: ऐसे नक्सल एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल होने का मौका मिला और इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा श्री सोमी जोशी सर जो इंस्पेक्टर जनरल थे
1: जी,
0: श्री दीपक सिंह जो मेरे बटालियन के कमांडेंट थे 32वीं वाहिनी के, इसके अतिरिक्त मेरे जो सीनियर्स थे श्री नरपत सिंह
1: जी,
0: श्री जसवीर सिंह तोमर, श्री गुलशन झा और जो मेरे सबऑर्डिनेट्स और कलीग थे ऋतुराज, अरविंद
1: जी,
0: राणा और प्रदीप का, जिन सब के टीम वर्क ने जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ग्रूम किया इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं बिल्कुल नया था फौज के लिए, मुझे ग्रूम किया ताकि मैं इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, लीड कर सकूं और विजय हासिल कर सकूं
1: जी। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शिवम कुमार जी हमारे पिछले संदेश टू सोल्जर्स में कुमार ऋतुराज जी भी हमारे साथ इस शो में मौजूद थे तो वो आपके सीनियर थे, उन्होंने भी बहुत गाइड किया आपको।
0: जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरे सबऑर्डिनेट थे और उनका भी सहयोग रहा है इस चीज़ में
1: जी। तो हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे ये ऑपरेशन किस तरीके से आपने कंप्लीट किया और कितना टफ था, कैसे प्लानिंग करी और कितने चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा, आपका टीम वर्क कैसा था?
0: जी बिल्कुल, सर्वप्रथम यह है कि किसी भी ऑपरेशन को
1: जी
0: सिर्फ आप असले और बारूद के बल पे आप नहीं जीत सकते हैं। ऑपरेशन जीता जाता है टीम वर्क से, साथियों के सहयोग से
1: जी,
0: एक उचित मार्गदर्शन से और सामरिक रणनीति से। इस ऑपरेशन में भी हमने सबसे पहले जो किसी भी ऑपरेशन का मूल आधार होता है वो है इंटेलिजेंस इकट्ठा करना
1: जी।
0: सबसे पहले हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा की माओवादियों के बारे में, जिस एरिया में मैं काम करता था
1: जी
0: लखीसराय बिहार में, वहाँ जितेंद्र कोड़ा, विनोद कोड़ा और अर्जुन कोड़ा, ये सब आतंक के प्रतीक थे जिनके ऊपर 50 से अधिक हत्याओं के मामले चल रहे थे। ये सभी नक्सली टीम के मेंबर्स थे और 50 से अधिक हत्याओं के इन पे मामले थे। हमने उनके बारे में आसूचना हासिल की, इंटेलिजेंस हासिल किया उनके बारे में, इसमें कि हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थे
1: जी
0: और टेक्निकल चीज़ों का भी हमने मदद लिया, गैजेट्स का हमने मदद लिया। उसके बाद उनको हमने एक चक्रव्यूह में फंसाया, जिस चक्रव्यूह में सभी नक्सली फंसते चले गए और फाइनली ये ऑपरेशन, एक लंबी कहानी है, ये एक दिन का सफर नहीं था, 3 महीने तक इसकी तैयारी चली।
1: ओके, तो आपने ये जो ड्रेडेड क्रिमिनल्स थे इनको न्यूट्रलाइज भी किया और इनको मतलब इनके उन जो काम थे इनके, उनके जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी उनको भी आपने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया इस ऑपरेशन के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल, उनका जो शैली था उनका, वो किडनैपिंग करते थे, एबडक्शन करते थे
1: जी,
0: लोगों में उनका आतंक था, कभी भी रात में किसी भी घर किसी के घर घुस जाना और बंदूक की नोक पे उससे ऐसे कार्य करवाना जिसको कि वो नहीं चाहता है करना, और उनके डर के कारण वहाँ की जो जनता थी कभी खुल के हमसे बात नहीं करती थी, अपनी शिकायतों को नहीं रखती थी। तो इस चीज़ पे हमने काम किया और फिर ये एक पूरी प्रक्रिया थी जिसको कि हमने किया इंटेलिजेंस जनरेशन से लेकर के और ऑपरेशन एग्जीक्यूशन तक।
1: और जाहिर है कि जब इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया तो फिर वो जो एक भरोसा जो टूट रहा था

0: वो जनता में भी फिर दोबारा से कायम हुआ होगा।
1: जी बिल्कुल, इसमें ऑपरेशन के एग्जीक्यूशन के उपरांत असली खुशी तो वही होती है। असली खुशी ये नहीं है कि आपने नक्सली को मार दिया या आतंकवादी को मार दिया। असली खुशी वो है कि जब आप जम्मू कश्मीर के जवाहर टनल से निकले, जब आपका कॉन्वॉय निकले या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा या बिहार के भीमबांध से जब आपकी गाड़ी निकले और तब कोई बच्चा हाथ में झंडा लिए जय हिंद आपको करता है,
0: क्या बात है।
1: तब जो उसके चेहरे की जो वो सुरक्षा का भाव उसके चेहरे पर रहता है, ये आपकी असली जीत है बतौर फौजी।
0: क्या बात है। तो उस झंडे के साथ और उस जय हिंद के नारे के साथ वो जो खुशी मिलती है, वो खुशी सबसे बढ़कर होती है।
1: जी बिल्कुल, वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी वही है कि जनता का विश्वास जो हमने जीता है
0: जी,
1: वो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ये करने में सक्षम हुए थे।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। और यही वो ऑपरेशन था जिसकी वजह से आपको प्रेस्टिजियस पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से नवाजा गया राष्ट्रपति द्वारा 2024 में।
1: जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में सबका सहयोग था, सीनियर से लेकर के जूनियर सबका सहयोग था।
0: जी
1: मैं आपको छोटा सा वृतांत इस ऑपरेशन का बताना चाहता हूँ।
0: जरूर जरूर।
1: ये हमारी प्लानिंग चल रही थी, जो बिहार के लखीसराय में मैं लोकेटेड था, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी। तो हमारी प्लानिंग चल रही थी कि वहाँ का जो नक्सल ग्रुप है उसको कैसे ट्रैप किया जाए, अपने चक्रव्यूह में कैसे लाया जाए। तो जिन सीनियर्स के मैंने नाम बताए आप
0: जी,
1: उनके सानिध्य में हमारी प्लानिंग चली। फिर हमने एक गुप्तचर को प्लांट किया उनके नक्सली टीम में, और फिर उसके द्वारा दी गई सटीक जानकारी के बेसिस पे हमें ये पता चला कि दिनांक 2 फरवरी 2022 जो मुठभेड़ का दिन था
0: जी,
1: उस दिन ये नक्सली जंगल में आने वाले थे। कोई एक खास जगह थी जहाँ पे वो आने वाले थे, तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार थे, हमने पहले से एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी। तो हमारी टीम उसके अंदर लॉन्च हुई, हम अपने पूरे फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ लॉन्च हुए। और हमारे जो कमांडेंट जो थे श्री दीपक सिंह एवं श्री सुशील कुमार जो लखीसराय बिहार के एसपी थे, एवं श्री मनोरंजन पांडे हमारे कमांडेंट सर थे, उनके मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम लॉन्च हुई, जिसमें नरपत सिंह डिप्टी कमांडेंट, गुलशन झा सर, जसवीर तोमर सर और मैं, और मेरे साथ अलग अलग रैंक्स के लड़के थे। हमने दो टीमें बनाई। और जंगल की अपनी चुनौतियाँ हैं।
0: बिल्कुल,
1: जंगल में आपको ये नहीं पता होता है कि गोली कब किधर से आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। तो हमें एक जनरल इलाका पता था कि यहाँ पे नक्सली आने वाले हैं
0: जी,
1: तो हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे थे अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ। और 2 तारीख को लगभग 9 बजे सुबह की बात है ये
0: जी,
1: सीधे गोलियों की बौछार हम पे आई।
0: ओके, तो यानी कि आपकी जब आंख खुलती है तो सीधा गोलियों से आपका स्वागत करते हैं वो लोग।
1: जी बिल्कुल, हम जब आगे बढ़ रहे थे उस एरिया की तरफ जा रहे थे तो एकदम से हमारी गोलियों की बौछार हमारे ऊपर आई। क्यों? और जंगल में एक सिद्धांत चलता है, यू मिस एंड आई हिट। और पहली गोली जो थी नक्सलियों की वो उन्होंने मिस कर दिया था, से किसी को भी वो उनकी पहली गोली नहीं लगी। तब हमें पता था कि अब हमें क्या करना है, उसने मिस कर दिया, वी आर गोइंग टू हिट देम।
0: एग्जैक्टली, मतलब हम नहीं मिस करेंगे किसी भी कीमत पर।
1: बिल्कुल, एक हमारी ट्रेनिंग ही इसलिए होती है कि हमको उसको हिट करना है। तो हमने वहीं पे रणनीति बनाई कि कौन किधर से कैसे अटैक करेगा। और फिर जवाबी जो हमारी कार्रवाई थी वो हमने फुल स्ट्रेंथ में जवाबी कार्रवाई की नक्सलियों के ऊपर। क्रॉस फायरिंग चली, बहुत देर तक फायरिंग चलती रही, लगभग आधे घंटे तक ये फायरिंग चली, उसके उपरांत जाकर के ये फायरिंग समाप्त हुई। तो ये जो यज्ञ, ये जो नक्सल एनकाउंटर होता है ना, ये हम फौजियों के लिए एक यज्ञ जैसा है, एक धार्मिक अनुष्ठान जैसा है, जिसमें कि हम अपना तन मन धन सब झोंक देते हैं। तो फिर जब ये फायरिंग ख़त्म हुई उसके बाद जाकर के हमने देखा तो हमने पाया कि 2 बॉडीज़ वहाँ पे हमें मिली, और संयोग से वो दोनों बॉडीज थी जितेंद्र कोड़ा और विनोद कोड़ा की,
0: मतलब जो उनके लीडर्स थे।
1: जी बिल्कुल, जो उनके लीडर्स थे, जिनका आतंक जो है वो पूरे लखीसराय क्षेत्र में, कहें पूरे बिहार क्षेत्र में फैला हुआ था, और जिनके आतंक के कारण जनता हमसे कुछ बात नहीं करती थी, हमारे नज़दीक नहीं आती थी, उन दोनों की बॉडीज हमें वहाँ मिली। और उसके अतिरिक्त एक उनका और लीडर था अर्जुन कोड़ा
0: जी,
1: जिसको कि उसके राइट थाई में जा करके हमारी गोली फंस गई थी, और फिर आगे आने वाले 1 महीने बाद
0: जी
1: उसने सरेंडर किया एक दूसरी फोर्स के सामने। और उसने ये बताया कि उस दिन एसएसबी के साथ हुई मुठभेड़ में वो गोली जो है मेरे थाई में आके फंस गई है, और अगर मैंने सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इलाज नहीं करवाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
0: तो उसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा।
1: जी बिल्कुल, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी, मैं इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम पल, अविस्मरणीय क्षण मानूंगा, जहाँ पे कि मुझे गर्व है कि मैं अपनी पूरे टीम के साथ ऐसे राक्षस से लड़ा
0: जी
1: और उसे पराजित किया। और उसका जो

0: मिला वो सबसे सुखद फल था कि जो हमारा ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा बंधुत्व
1: जी,
0: हमने सेवाएं दी वहां की जनता को, उनके मन में नक्सलियों को मारने के उपरांत
1: जी
0: उनके मन में एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ
1: बिल्कुल,
0: और अंततः वो बंधुत्व में तब बदला जब मैं उसी गांव वाले के साथ जो हमसे बात नहीं करता था उसी के साथ मैं बैठ करके चाय पीता था
1: और क्या बात है?
0: खाना खाता था,
1: क्या बात है
0: तो
1: सर,
0: ये सशस्त्र सीमा बल की जीत थी।
1: बेशक बेशक, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो आपका इतना डायरिंग ऑपरेशन था उसके बाद इसमें जो आपने कामयाबी हासिल करी तो यही सबसे बड़ी जीत थी कि जो विश्वास जो आपने बनाया उन लोगों में जो आपसे पहले बात करने में डरते थे। यहां जिस तरीके से शिवम कुमार आप अपनी जिस तरीके से ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे भाई, इमेजिन कर रहा था यहाँ स्टूडियो में बैठ करके कि वो क्या सिचुएशन वो मंजर रहा होगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ, एक शायद लिसनर भी जानना चाहता है और इतने मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं मैं उनको अभी ले नहीं पा रहा, बाद में लूँगा। तो क्या ये जो हम अक्सर मैं बात करता हूँ कि हम इस तरीके की कुछ सिचुएशंस देखते हैं, आप आमने सामने से दो ग्रुप में जो फायरिंग चल रही है, बैटल चल रही है, वॉर सिचुएशन है, तो हम फिल्मों में जो देखते हैं तो बड़ा एक्साइटमेंट सा होता है, लेकिन आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं और आप अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पर लगा रहे हैं उन क्रिमिनल से, उन आतंकवादियों से लड़ने के लिए। सर वो मोमेंट, वो जज्बा, वो जो एक फीलिंग होती है वो क्या होती है, वो खौफ, वो डर, वो सिचुएशन, वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे आपके अपने शब्दों में।
0: सबसे पहले तो मैं जो सुन रहे हैं जितनी भी श्रोतागण हैं मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये फिल्मों में जो ग्लैमराइज किया जाता है, फौज में आने के सबसे पहले दिन तो आपका ग्लैमर जाता है, वो ग्लैमर छूटता है सबसे पहले, क्योंकि आप ग्लैमर के बल पे आप ये बहुत लंबी सेवा नहीं दे सकते हैं
1: जी।
0: इसमें आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेम की भावना
1: जी,
0: जो राष्ट्र के प्रति जो आपकी सेवा भाव है जो अंतर्निहित किया जाता है, वही आपको लंबे समय तक बतौर फौजी आपको खींचेगा। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जब गोलियां चलती हैं
1: जी,
0: तो हमारी तैयारी इसी क्षण के लिए होती है। एक फौजी के जीवन में ये सबसे बड़ा क्षण होता है कि जब उसको सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसने समाज के में कई हत्याएं की हैं
1: जी,
0: कई बेगुनाहों की जान ली है, जब वो उसका खात्मा करता है तो हम इसे किलिंग नहीं, इसे हम वध मानते हैं। और एक राक्षस का वध करते हुए जो अनुभूति होती है, जो आनंद आता है, वो
1: उसके कहने क्या है,
0: उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा
1: सकता। क्या बात है। और इसीलिए देश की मिट्टी को सलाम करने को जी चाहता है उसी जज्बे के साथ, जिस जज्बे के साथ शिवम कुमार ने इस खतरनाक ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया। सर मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता, मैं आपको एक एक करके कुछ मैसेजेस पढ़ करके सुनाऊंगा। शुरुआत जो सबसे पहला मैसेज आया हमारे पास यहां पर, बोथ आरजे एंड असिस्टेंट कमांडेंट शिवम जी एंड ऑल एआईआर न्यू दिल्ली फ्रॉम, ये मुबारकबाद दे रहे हैं, वणक्कम नमस्कारम। और ये हैं श्रीरंगम राजेश, श्रीरंगम त्रिची त्रिचुपल्ली तमिलनाडु से
0: जी। धन्यवाद और जय हिंद राजेश जी आपको।
1: और इसके बाद है एक मैसेज, जय हिंद साहब, बहुत बहुत मुबारक सर आपको, SSB के जरिए पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं आप, आपके साथ
0: कजरा लिखा है,
1: हाँ कजरा में काम कर रहे, बहुत कुछ सीखने को मिला साहब, जय हिंद। सर ये आपके कोई एसोसिएट, कोई आपके साथी या जूनियर लगते हैं?
0: बिल्कुल ये मेरे साथ के हैं, मेरे अच्छा। जूनियर और सीनियर तो है, ये पूरी टीम की बात है क्योंकि
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: मेरे टीम के साथी हैं कार्य किया है हमारे साथ।
1: और इसके बाद ये जय हिंद टू रेस्पेक्टेड गेस्ट सर एंड आरजे सर हियर, आई वुड लाइक टू पे माय ग्रेटिट्यूड टू शिवम सर एंड ऑल आवर इंडियन आर्मी फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इट्स बिकॉज देयर सेल्फलेस सर्विस विद डेडिकेशन डिवोशन दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी फेयरलेसली, दे आर रियल हीरोज, I bow my hat to them, so I would say Jai Hind, Bharat Mata ki Jai, Vande Mataram. Myself Shankar Lodh and my wife Anjali Lodh offer obedience to all my to them. My request to Arjun sir, please forward my message, Shivam sir. Thank you, sir. आपका message हमने पहुंचा दिया है, Shivam sir सुन रहे हैं।
0: जी धन्यवाद Mrs. and Mr. Lodh जी, मैं आशा करता हूं कि आप ये सभी संदेश जो फौजियों के द्वारा दिया जा रहा है उसको सुन रहे हैं
1: जी,
0: और इस चीज के लिए आपका धन्यवाद
1: जी। इसके अलावा मैसेज है ये शुभ संध्या कह रहे हैं, जय हिंद, राजेश भल्ला एडवोकेट हैं कंकड़खेड़ा मेरठ से
0: जी। बिल्कुल धन्यवाद आपको राजेश जी, मुझे खुशी है कि
1: जी
0: एडवोकेट से लेकर के टीचर सभी वर्ग के लोग हमारा इस संदेश को सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल सर, अपने कर्म और मजबूत इरादों के लिए पहचाने गए नक्सल उन्मूलन हेतु कृत संकल्प राष्ट्र प्रेमी को सल्यूट है। ललन मिश्र रांची झारखंड से सर ये मैसेज कर रहे हैं आपको
0: जी। बिल्कुल रांची मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि रही है, तो यहां से मैसेज आया।
1: बिल्कुल, और आपके अदम्य साहस और त्याग के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित चैन की नींद सो पाते हैं, आप हमारे असली नायक हैं। जय हिंद जय भारत, यह है नेहा मिश्रा सर।
0: मुझे खुशी

0: है कि समाज के सभी लोग
1: जी
0: फौज के कार्यों का, फौज की जो भी ड्यूटीज होती हैं उसका इतना सम्मान कर रहे हैं।
1: और ये है सर, जय हिंद सर। प्लीज एक कविता भारत माँ के नाम कहिए। रोहित मेहर हैं ये, विजयपुर बारगढ़ उड़ीसा से।
0: जी रोहित जी, धन्यवाद। मैं कविता सुनाऊंगा आपको अंत में।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर सुनना चाहेंगे सर। हम लोगों का शिवम सर के साथ काजरा बिहार में कार्य करने का अनुभव बहुत उम्दा रहा। शिवम सर का पुलिस को जनता से करीब लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है काजरा लखीसराय बिहार में। सर ये भी आपके कोई साथी लगते हैं, सौम्य झा इनका नाम आ रहा है।
0: जी बिल्कुल, ये मेरे साथ के ही हैं और हमारा उद्देश्य यही होता था कि जनता और पुलिस के बीच, फोर्स के बीच की जो खाई है उसको, उस खाई को पाटना ही
1: पाटना
0: हमारा उद्देश्य था।
1: बिल्कुल करीब लाना है। जय हिंद सर, मैं आपको सुन रही हूँ, आपकी बातें और आपकी आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ हमारे देश के नौजवान प्रभावित होकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं शबनम हूँ, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से। गैलेंट्री अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई दे रही है सर ये आपको।
0: धन्यवाद शबनम जी, जय हिंद।
1: और ये हैं शिवम जी, यू आर अ पर्सन ऑफ ग्रेट विल पावर एंड करेज, एट द सेम टाइम यू आर वेरी काइंड ह्यूमन, अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर आवर यंगर जनरेशन। मैसेज आया सर ये विश्वजीत बिहार से, प्राइड ऑफ नेशन, प्राइड ऑफ बिहार, शिवम कुमार।
0: धन्यवाद विश्वजीत जी हमारे कार्यों की सराहना करने के लिए।
1: जी और ये हैं सर, हेलो सर, ग्वालदाम में महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने काम किया है। ये हैं मृदुल झा।
0: जी धन्यवाद मृदुल जी आपको, ये मुझे उम्मीद है कि ये शायद हमारे यहाँ माउंटेनियरिंग कोर्स जो महिलाओं का चल
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है,
1: जी उसकी ये उसकी जरूर जरूर पार्टिसिपेंट रही होंगी। मैं नरपत सिंह, उप कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ कांकेर छत्तीसगढ़, अपने 60 जवानों के साथ आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं सर। ये एफएम रेनबो की पूरी टीम को हार्दिक आभार। कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणादायक और आनंददायक है। हमारे साथ श्री दकेश्वर प्रसाद चंद्र, सहायक कमांडेंट भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी शिवम जी एवं पूरी टीम को विशेष रूप से जय हिंद।
0: नरपत सर 4 बार के गैलेंट्री विनर हैं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं और हमारे टीम के ये ग्राउंड कमांडर्स में से एक थे, तो जो मैंने सीखा है इन्हीं सीनियर्स से सीखा है।
1: क्या बात है सर। तो नरपत सिंह जी भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं अपने इस शो के माध्यम से, आपने हमें मैसेज भी किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं शिवम सर, एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी, फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ हिम, ही ट्रूली डिजर्व्स ऑल द एक्लेड्स बिकॉज ऑफ हिज टीम एंड देयर डेडिकेटेड एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ पीपल टुडे लिव टेरर फ्री, प्राउड ऑफ हिम। आयुष दाडिच हैं ये नई दिल्ली से।
0: जी बिल्कुल, ये हमारे जूनियर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस पहल की शुरुआत हम लोगों ने की है
1: जी,
0: उस पहल को आगे आने वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको मकाम तक ले जाएंगे अपनी टीम के साथ।
1: बिल्कुल, और आयुष भी उसका हिस्सा रहेंगे।
0: जी बिल्कुल।
1: और ये है नक्सली ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई शिवम जी, प्राउड ऑफ शालिनी पाठक लिख रही है आपके लिए।
0: धन्यवाद शालिनी जी आपका।
1: और ये है मैं सोता हूँ रातों को चैन से, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए कोई जाग रहा है, शिव है ये मेरठ से।
0: ये हमारा फर्ज है, हमने राष्ट्र सेवा की कसम खाई है और आप ऐसे ही आप चैन से सोएं, यही हमारी कल्पना है।
1: और ये है सर, शिवम सर के साथ कचरा में काम करने का अवसर मिला, कई ऑपरेशन में उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया। शिवम सर का नक्सलियों के लिए डायलॉग था कि ये कि या तो तुम अपनी हरकत छोड़कर समर्पण कर दो या ये देश, वरना अंजाम तो जानते ही हो। टीम को सदा फ्रंट से लीड किया है, ये कह रहे हैं पंकज लखीसराय से। सर आपके साथ ही हैं भी।
0: जी पंकज हमारे साथ के थे और ये सभी जाबाज ये टीम मेंबर्स हैं मेरे, जिन्होंने गोलियों के सामने जिन्होंने सभी ऑपरेशंस को अंजाम दिया है।
1: जी जी जी, और आपका पूरा पूरा साथ दिया और अपने आप को बिल्कुल कदम से कदम मिला करके।
0: जी बिल्कुल, ये इनके बिना ये सारी उपलब्धि या ये सारा ऑपरेशन संभव ही नहीं था।
1: बिल्कुल। और एक और मैसेज है सर, जय हिंद सर, जब भी आपका प्रोग्राम सुनते हैं संदेश टू सोल्जर, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। आपको बहुत बहुत बहुत जय हिंद। हम भी सर अपने बच्चों के को आर्मी में भेजना चाहते हैं। हम संजय बोल रहे हैं उत्तम नगर से नई दिल्ली, और आपका प्रोग्राम बहुत बहुत अच्छा है और हमारे आर्मी के सभी जवानों को जय हिंद कह रहे हैं ये।
0: ये धन्यवाद संजय जी, और एक बार फिर से जैसा इन्होंने कहा, मैं एफएम रेडियो को, एफएम रेनबो को धन्यवाद देना चाहता हूँ
1: जी,
0: कि जो देश विदेश के सभी लोगों को फौज के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उससे अवगत करा रहा है और फौज के राष्ट्रप्रेम से, राष्ट्रप्रेम की झागना को, भावना को प्रज्वलित कर रहा है लोगों के अंदर।
1: बिल्कुल सर, आकाशवाणी रेनबो का ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेटेड शो है ये, और ये है संदेश टू सोल्जर्स। सर आपके साथ बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, जो समय हमारे पास बचा है वो बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए इस जोश और जज्बे के साथ। हमारे साथ हैं श्री शिवम कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स शाहिद के साथ।

102.6 देश का नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। आप हैं शाहिद के साथ और हमारे साथ हमारे आज के खास मेहमान श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट हैं सशस्त्र सीमा बल। सर, हम आपसे बहुत ही शानदार और जोश और जज्बे से भरी हुई बातें यहां पर कर रहे हैं और लगातार मैसेजेस का भी सिलसिला जारी है, मैं आपको जैसे अभी बता रहा था। तो हम यहां पर अब आगे बढ़ेंगे सर और जानना चाहेंगे कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं, आपका ऑपरेशनल एक्सेलेंस है जो आपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में दिखाया, उसके अलावा

0: आपने कई खतरनाक वांटेड एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल्स को भी ढेर करा, उनको पकड़ने में पूरे पूरे सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए। उसके अलावा आपने इसके अलावा भी कई हाई रिस्क ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं, जिनके लिए आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे पहला प्रेस्टिजियस अवार्ड था पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 2024 में। उसके अलावा आपको कई सारे मेडल्स, कमेंडेशंस और एप्रिसिएशन मिले हैं, सर्टिफिकेट्स मिले हैं डायरेक्टर जनरल SSB से, इंस्पेक्टर जनरल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस से और कमांडेंट से और अदर सीनियर ऑफिसर से भी। आपको आपकी परफॉर्मेंस के लिए, आपकी ऑपरेशनल अचीवमेंट्स के लिए, आपकी लीडरशिप के लिए, आपके प्रोफेशनलिज्म के लिए, पब्लिक स्पीकिंग और साथ ही एक चीज़ और भी जो आपके साथ जुड़ी हुई, इतनी सारी आपकी जो खूबियाँ हैं उनके साथ साथ कि आपकी जो लीडरशिप स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग है, आप किस तरीके से मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को, और साथ ही साथ फोर्स लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी आप कंडक्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी शाजी जी, इसमें सबसे प्रथम ये है कि आप जिसके साथ भी कार्य करते हैं, तो हमारे के जितने भी टीम मेंबर्स होते थे, हमारे जितने भी साथी होते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक,
0: जी
1: आपको ये समझना पड़ेगा कि आप फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हैं, आप उनके साथ के ही हैं। जब आप उनकी परिस्थिति को समझेंगे, जब आप उनके शूज में आएंगे, तभी आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो एक कमांडर का सर्वप्रथम यह कार्य है कि वो अपने साथियों की परेशानियों को समझे, उनको बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ मुहैया करवाए और उनको मोटिवेटेड रखे कि हर परिस्थिति में, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल इश्यूज हो, लगातार उसको केटर करे, उसकी समस्या का निराकरण करने की कोशिश करे और हर वक्त उसके साथ खड़ा हो, उसके अच्छे दिन में, उसके बुरे दिन में। तभी जा कर के वो फौजी या वो जो भी आपका सबॉर्डिनेट है, वो आपसे आगे जब भी बाधा आएगी, जब भी गोली आएगी, तभी वो आपसे आगे, कमांडर के आगे वो खड़ा होगा। जब उसको पता होगा कि उसका कमांडर उसके लिए हर क्षण खड़ा है, तभी वो आपके लिए खड़ा होगा,
0: तभी वो खड़ा होगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से खड़े हैं। सर, हम आपके अवार्ड्स और जो कमेंडेशंस हैं और जो आपके मेडल्स हैं उनकी बात करते हैं। नवंबर 2025 में एंटी नक्सल ऑपरेशंस और शानदार लीडरशिप के लिए ऑनरेबल गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड ने भी आपको अवार्ड से सम्मानित किया था, वो कौन सा अवार्ड था?
1: जी, मुझे एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए 2024 के नवंबर में,
0: जी
1: 2025 के
0: नवंबर, 2025 नवंबर, जी
1: 2025 के नवंबर में, क्योंकि मैं झारखंड का रेसिडेंट हूँ,
0: जी,
1: तो मुझे झारखंड के ऑनरेबल गवर्नर एवं ऑनरेबल CM के द्वारा सम्मानित किया गया था, क्योंकि मैं वहाँ का वासी हूँ, मेरा स्टेट झारखंड है और मैंने अपने फोर्स के लिए और अपने देश के लिए या अपनी टीम के साथ मिलकर मुझे ये कार्य करने का अवसर मिला था,
0: जी
1: इसका सम्मान किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा।
0: जी, और सर इसके अलावा आपको उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी जनवरी 2026 में भी आपको सम्मानित किया गया था। आपकी जो एज ए ट्रेनर CINJW स्कूल SSB गोलदाम में आपने जो अपनी सेवाएं दी एज ए ट्रेनर, उसके लिए भी आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने भी सम्मानित किया था।
1: जी, मैं मेरी अभी जो करेंटली जो मेरी पोस्टिंग है,
0: जी
1: वो CINJW स्कूल SSB ग्वालदम में उत्तराखंड में है, जहाँ मैं बतौर ट्रेनर हूँ। तो पिछले 2 वर्षों से मेरी सेवाओं को फैसिलिटेट करने के, उसको सम्मानित करने के लिए मुझे ये मौका मिला कि मेरे सीनियर्स के द्वारा मेरा नाम नामित किया गया। मेरे DIG सर थे, श्री DN बॉम्बे सर, उन्होंने मेरा नाम नामित किया और मुझे झारखंड उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये पुरस्कार दिया गया।
0: जी, तो ये सर इतने सारे पुरस्कार हैं, इतने सारे आपके जो कमेंडेशंस हैं, मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं, इनको पा करके आप सर कैसा महसूस कर रहे थे और करते हैं?
1: सच पूछूं तो जब भी कोई कार्य करता है अपने एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मैं जा रहा था, तो सर्वप्रथम इसमें ऐसा नहीं था कि पुरस्कार के लिए ये चीज़ें की जाती हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तब सिर्फ राष्ट्रहित और देशहित का जो जज्बा है वही आपको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन पुरस्कार उसका फल है। तो मैंने जितने भी ऑपरेशंस किए, मैंने अपने सीनियर से सीखा है कि आप फल के पीछे ना भागें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि ज़िंदगी और मौत जो है वो लाइन पे खड़ी होती है। तो इसके लिए पुरस्कार सिर्फ आपका मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं हो सकता, ये टीम एफर्ट है, राष्ट्रहित की भावना है जिसके लिए मैं ये कर रहा था।
0: जी,
1: और जब पुरस्कार से इसको नवाजा जाता है तो निश्चित रूप से ये अच्छा प्रतीत होता है,
0: बेशक, और हौसला और भी बढ़ता है और आपके जो भी साथी होते हैं उनको भी हौसला मिलता है। सर, ये सब ऑपरेशंस में, इतनी सारी आपकी ट्रेनिंग में, इतने आपके कोर्सेज में और फैशन टेक्नोलॉजी से SSB में आने में, परिवार का आपका किस तरीके से पूरा एक रोल रहा, सहयोग रहा, कैसी सपोर्ट रही, ये भी बताइए।
1: जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं बड़े परिवार से आता हूँ, जिसमें कि हम लोग 4 भाई बहन हैं और मेरे माता पिता हैं और मेरी शादी हो चुकी है, मेरी धर्मपत्नी भी हैं।
0: जी,
1: तो मेरे पिताजी ने और मेरी माँ ने इसका

0: खुले दिल से इसका सपोर्ट किया जब मैं फोर्स में
1: जी
0: आना चाहता था। हालांकि मेरी माँ डरती थी इस चीज़ से,
1: ओके
0: लेकिन मेरे पिताजी ने बहुत बार मुझे मोटिवेट किया, और मेरे जितने भी भाई बहन हैं और जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरी दो बहनें बड़ी हैं, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं,
1: अच्छा,
0: उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए लगातार। और अंत में जिस व्यक्ति का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा
1: जी,
0: वो है मेरी पत्नी। उन्होंने लगातार, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनको ही इस कठिनाई को झेलना पड़ता था जब मैं बाहर रहता
1: जी,
0: था, 3-4 दिनों तक मेरी बात नहीं होती थी उनसे, तो
1: जाहिर ये सपोर्ट तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट।
0: हाँ, ये ऐसा सपोर्ट था जिसकी कि मैं कल्पना नहीं की थी मैंने, तो मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला है।
1: सर बिल्कुल, समय हमारे पास खत्म हो चुका है और बातें बहुत सारी बची हुई हैं और मैसेजेस इतने आ चुके हैं मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन मैं बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूँगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियाँ भी ज़रूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक

मेरे पास कि अगर मैं पढ़ना शुरू करूं तो मुझे लग रहा है कि 15-20 मिनट उसी में निकल जाएंगे। लेकिन बस चलते चलते आपसे एक दो मैसेज पढ़ने के बाद चाहूंगा कि आप युवाओं को मोटिवेट करने के लिए कोई बात कहना चाहें तो वो कहें, और साथ ही अपनी वो एक स्पेशल कविता की चंद पंक्तियां भी जरूर सुनाइएगा। और मैं आपको तब तक एक दो पैसेज बता दूं सर, ये है वी आर प्राउड ऑफ यू शिवम सर, रागिनी है गुवाहाटी से। इसके अलावा जय हिंद सर, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से। इसके अलावा ये है हमारे देश के फौजी भाइयों की हमारे को हमारे ओर से सल्यूट, और काफ़ी लंबा मैसेज है, ये है पंडित चनप्पा सौंदर्य तेजस्विनी सरवाद से। और आप इसी तरह सभी को प्रेरणा देते रहें, और जय हिंद।

0: वेलकम बैक टू द शो। तुम सुन रहे हो 102.7 FM बैंड मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है ते तुम सुन रहे हो शो युववाणी ते जिथे चल रहा सी टेक टॉक सैगमेंट। तो अगली खबर असी लेके आए हैं टेकटॉक दे विच, इसरो दा गगनयान पैराशूट टेस्ट सफल होया 8 जुलाई 2026 नू। इसरो टेस्टिंग फैसिलिटी दे विच होया, इसरो दे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर दे विज्ञानी गगनयान क्रू मॉड्यूल दे इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी कि आई मैट नू सफलता पूरा कीता गया। क्रू कैप्सूल नूं धरती ते सुरक्षित उतारन लई भारत दे पहला मानव अंतरिक्ष मिशन लई इह सब तों महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रणालियां विचों इक है। हुण इसरो ऑर्बिटल टेस्ट मिशन्स दी तैयारी नूं होर तेज़ कर रहा है।
1: ते दोस्तों अगली खबर टेकटॉक्स दी साडी स्पेस तों ही आ रही है कि जेकर मैनूं पता काव्या यू लाइक साइंस फिक्शन मूवीज।
0: यस आई डू लव देम।
1: इंटरस्टेलर वर्गियां।
0: जी जी
1: ठीक है। ते ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ
0: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।
1: ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟੈਲੀਸਕੋਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਬਲੈਕ ਹੋਲਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਲੱਭ ਲਈ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ब्रह्मांड दे ओ रहस्यमय हिस्से जिथे ग्रैविटी इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि रोशनी यानी लाइट भी उसके अंदर बाहर नहीं निकल सकती। पहला साइंटिस्ट नूं लगदा सी कि ब्लैक होल्स लभणे बड़े औखे ने, पर इस नवी हाई रेजोल्यूशन तकनीक ने साबित कर दिता है कि साडे आले दुआले बहुत सारे अजिहे हिडन ब्लैक होल्स मौजूद हैं जो पुराने सिस्टम दे विच पकड़ विच नहीं आते सन। पर यह टैक्नोलॉजी की एक बहुत वड्डी जित है।

0: चिंता ना कर साहिबा, मिर्जे दी बकी हवा नु चीर दे होया पलांच तेरे वीरा तो कोहा दूर निकल जाएगी।
1: जस्ट चिल मिर्जिया, मेरे वीर तो हले घरों ही नहीं निकले, उते कार बैठे एफएम रेनबो सुन रहे ने, ते सुनदे ही रहेंगे।
2: एफएम रेनबो बाकी सब कुछ फुला देवे।

जानकारी जरूर हासिल करो कि जॉब लैन जाने हो तो उदे बारे जरूर जान के जाओ एक्चुअल है कि फिर ही तुसी अपना 100% दे सकते हो। जानकारी हासिल करने की आदत साड़ी जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउण दा काम करती है क्योंकि हनेरे च तुहाडे कोल रोशनी दे साधन होण नालों किते भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हुंदा उन्हां साधनां नूं वरतों विच लैके आउण दा ढंग। बिल्कुल सही गल आ। कई बार की हुंदा है कि घरां दे विच पता हुंदा है कि इस चीज़ की लोड़ हैगी आ पर किवें उन्हूं एग्जीक्यूट करवाना किवें घर की जिहड़ी पंचायत लगती उहदे विच मता पा के उन्हूं प्रूव करवाना उहदा ढंग आउणा भी बहुत जरूरी है। तो ताई कहिंदे ने कि अपने अंदर जानकारी प्राप्त करन दी दिलचस्पी पैदा करो। बिना जानकारी दे असी अपने वसीलियां नूं खत्म कर लैने आ ते जानकारी दी मदद नाल असी हर खात्मे दी वजह नूं अपना वसीला बना सकते हैं। ढुकवें साधनां दे नाल समस्या दा हल कर देना एक आम गल हुंदी आ पर जेकर असी बेलोड़े साधनां नूं ढुकवां बना लैने आ तां समस्या दा हल देना साडे आम व्यवहार नूं भी खास बना दिंदा है। ते इह सारी जानकारी एक ही तरीके ना संभव हो सकती है जदों असी कुछ करन तो पहला उदे बारे जानना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल सवेरे उठते हो ये तो जानो उठे क्यों अज का टीचा की है करना की है दिन वेस्ट तो नहीं करना है या फिर जिन्हें भी हुण घंटे बचे ने रात खत्म होने दे विच उस दरमियान की करना है की टीचे ने की स्टडी करनी है सैल्फ स्टडी करनी है या फिर तुसीं कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज ऐड करनी है साढ़े उत्ते हुंदा है। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇਗੀ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂਘ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਓਸਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਿਓਸਟੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੁਚੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਤਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ FM ਰੇਨਬੋ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 6:33 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਮਰਤ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਦਾ।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हाँ अपना तुहाडा मेज़बान आरजे जोरावर सिंह लैके हाजिर हाँ तुहाडा अपना शो जिहदा नाम है फिल्मी दुनिया। फिल्मी दुनिया अज असीं गलबात करांगे गुरु दत्त जी की। गुरु दत्त नूं समर्पित ये जिहड़ा शो रहेगा। सो तुसीं सुन रहे हो फिल्मी दुनिया ते मैं हाँ तुहाडा अपना मेज़बान, जिवें कि मैं तुहानूं दस दिता है कि आरजे जोरावर सिंह। अज दा ये सफर समर्पित है उस फनकार नूं जिसने सिर्फ फिल्मां नहीं बनाईयां सगों जज्बातां नूं पर्दे ते जिंदगी बख्शी है। एक अजिहा कलाकार जिस दी हर फिल्म एक कविता वांग महसूस हुंदी है। जी हाँ,

क्या बात है, क्या बात है, मजा आ जाता है ना पुरानी कहानी सुन के। सो दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है ते अपना फेवरेट शो तुसी सुन रहे हो जिदा नाम है फिल्मी दुनिया, जिदे विच अज असी गल कर रहे हैं महानायक कह सकते हैं आपां, क्योंकि एक्चुअल च ओल्ड इज गोल्ड, जिहड़े भी साडे सीनियर ने महानायक हुंदे ने, गुरु दत्त जी दे बारे गलबात कर रहे हैं। सो जिहड़ा कोई डायरेक्टर हुंदा या कोई क्रिएटिव इंसान हुंदा ना, वह उदों तक शांत नहीं रहिंदा जदों तक उहदी आपदी सैटिस्फैक्शन ना हो जाए। सो गुरु दत्त जी उन्हां विचों ही एक सन। गुरु दत्त जी हर शॉट नूं कई कई वार लैंदे सन, मतलब जदों उन्होंने कोई भी शूटिंग करनी हुंदी सी या शूट करदे सी करैक्टर्स नूं उन्होंने मैनेज करना, मैनेज करके जद तक वह डायलॉग डिलीवरी सही ढंग नाल नहीं सी हुंदी या फिर उन्हां दी वह पोजिशन जिहड़ी बॉडी दी पोजिशन है सही ढंग दे नाल नहीं उन्हां नूं लगदी सी, तो बार बार बार बार शॉट लैंदे सीगे। कई वैसे आर्टिस्ट इन्हां तों डरदे भी हुंदे सीगे ते तंग भी हो जांदे हुंदे सीगे, पर फिर जदों रिजल्ट देखदे हुंदे सीगे फिर वह ऑटोमैटिकली गुरु दत्त जी दे फैन बन जाते हुंदे सी। गुरु दत्त जी हर शॉट नूं कई कई बार लैंदे सन, इत्थों तक कि खुद जदों एक्टिंग करदे सन उदों बार बार शॉट लवांदे सन डायरैक्टर कोलों, नाल दे जिहड़े उन्हां दे साथी हुंदे सी उन्हां नूं वी उह कहिंदे हुंदे सी वी रीटेक लै लो ज़्यादा वधिया रहेगा। रोशनी लाइटिंग ते परछावियां जिवें आपां अंग्रेजी च कह दिंदे शैडोज दा इस तरीके दे नाल इस्तेमाल करदे सन कि हर दृश्य एक पेंटिंग वर्गा लगता सी। वाओ, एक्चुअल च किन्नी गहराई किन्नी खूबसूरती है इस गल दे विच। इसलिए अज भी फिल्म स्कूलां विच उन्हां दीआं फिल्मां दी पढ़ाई हुंदी है, मतलब जिन्ने भी फिल्मी स्कूल ने अज की डेट में उन्हें सारे स्कूलों के उन्हों की खास करके स्टडी करवाई जाती है, क्योंकि इन्नी बारीकी दे विच एक महानायक एक महान कलाकार ही जा सकता है। वो सन गुरु दत्त।

वेल दोस्तों, वेलकम बैक एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर दा रेनबो चैनल है। ते लाओ जी हुण टाइम हो गया मस्ती दा, यानी के मस्ती जंक्शन दा विद आरजे वरुण कौर मान ते साडे अज दे स्पेशल गेस्ट ने जिन्हां दा नाम है मनदीप कौर। मैं कहा जी तैयार हो जाओ, इन्हां ने इन्ना सोहणा जे तुहानू कि तुसीं हस हस के लोटपोट हो के कितें डिग ना जाओ, इस लई अपनियां सीट बैल्ट जिहड़ियां ने ना उह बन्न लो। जे कोई सीट बैल्ट नहीं हैगियां ते उदां ही कोई कपड़ा लै के अपने आप नूं बन्न लो, कितें डिग ही ना जाए। लाओ फिर असी सद्दा पत्र दिंदे आ जी साडे इन्ना कलाकारां नूं, ते ओ अगला शो जिहड़ा तुहानूं सुनाउणगे, ते हो जाओ फिर तैयार, कर लो जी कमर कस, ते लाओ जी साडे दरमियान पहुंच रहे ने शो लैके मस्ती जंक्शन आर जे वरुण कौर मान, गेस्ट मनदीप कौर।

0: 102.7 FM रेनबो प्रोग्राम मस्ती जंक्शन ते मस्ती जंक्शन दे विच मनदीप कौर कॉमेडियन साडे नाल मैं तुहाडे नाल आरजे बरुण कौर मान मनदीप हुण ना मैं इधरली करनी ना मैं उधरली करनी मैं ऑडियंस नूं बड़ा तंग कर दिता तीन वारी तुहाडे नाल थिएटर दी गल करके तुहाडा जवाब नहीं लिया हुण मैनूं दस दिओ कि किद्दां थिएटर दे विच आए किद्दां इह कॉमेडी ही क्यों किहड़े रोल्स तुसीं होर भी करदे रहे हो क्योंकि असीं तुहानूं एज़ अ कॉमेडियन ही तां जाणदे आ
1: थिएटर च आना भी एक मेरे वास्ते भी कह लो भी इस तरह ही कॉमेडी वाली गल ही होगी मस्ती वाला ही दिन सीगा पानी पीन जिवें क्लास चो बाहर आई हाँ मैं छोटे होंदे सत्तवीं अठवीं क्लास की गल है तो उत्थे कोई ड्रामा की रिहर्सल चल रही थी टीचर करवा रहे थे मैं उत्थों ही निकलती पई तो मैं वह बच्ची नूं वेख रही थी जिन्हों डांट पै रही थी भी एक छोटा जो रोल है तेनों समझ नहीं पैंदा भी तू इधरों आना आ डायलॉग बोलना चले जाना मैं उन्होंने बड़े ध्यान

नमस्कार एफएम न्यूज़ हेडलाइन विच तुहाडा स्वागत है। भारत ते आस्ट्रेलिया ने यूरेनियम सप्लाई अते एक महत्वपूर्ण खनिज लांघे ते इतिहासक समझौता ते दस्तखत कीते। साइबर टेक्नोलॉजी अते सप्लाई लड़ी ते आस्ट्रेलिया भारत भाईवाली की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अते आस्ट्रेलिया दे प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने मेलबॉर्न में अपना सालाना शिखर सम्मेलन किया। श्री मोदी ने कहा है कि दुवल्ले संबंध डूंगे आपसी विश्वास से आधारित एक विशाल युग में दाखिल हो गए ने। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भुवनेश्वर विच खुले समुद्र च मच्छी पालन वसीलियां दी निरंतर रहनयोग वरतों लई राष्ट्रीय मिशन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वालों अज नवी दिल्ली विच पंजाब समेत सरहद जिलों के पुलिस सुपरिटेंडेंटा की कॉन्फ्रेंस की प्रधानगी। पंजाब च वोटर सूचियां की विशेष गैण सोध तहत 11 अते 12 जुलाई में सूबे भर के सारे वोट केंद्रां ते गणना फार्म जमा कराने लई दो दिन विशेष कैंप लाया जाएगा। पंजाब राज कार विभाग वालों जलंधर स्थित एक फर्म के मालक न 55.35 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग घोटाले के संबंध में गिरफ्तार किया गया। पंजाब के खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां अते जम्मू कश्मीर के मंत्री श्री सतीश शर्मा ने दोवां राज्यां दे किसानां दी बेहतरी लई अंतरराजी सहयोग नूं होर मजबूत करन बारे विचार वटांदरा कीता। देश भर विच मानसून सरगर्म लगातार बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी खेतर विच आम जीवन नूं प्रभावित कीता है। ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਕਲਬਾਲ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿਕਲਬਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2026 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ 2020 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੜੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਰਾਤ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਕਾਉਂਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਐਫ ਐਮ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੋਗੇ।

पोस्ट फूल चिंचोली तालुका पंडरपुर। फरमाइश करता हूँ कि नाम जी बहुत सारे हैं, हम बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी। मुझे पता है जब जब मैं आपके नाम ले रहा हूँ आप खुश हो रहे हो, चेहरे पे मुस्कान आ रही है, और ज़्यादा नहीं हंसना, चाय का प्याला ना गिरा बैठना, या कोई भी आप खा पी रहे हो गिराना नहीं। सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, बानू बी मुलानी, बादशाह मुलानी, वाह वाह क्या बात है, और पूरा मुलानी परिवार, क्या बात है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना खूबसूरत मैसेज भेजा, तो लीजिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं, धन्यवाद।

जी याद करेंगे, क्या बात है यार, ओल्ड इज गोल्ड वाकई यार। एवी नहीं बुजुर्ग कहें दे, सियाने कहें दे कि ओल्ड इज गोल्ड, वाकई एक एक शब्द विच ना फील जुड़ी हुई है, और किन्ने फील दे नाल जिहड़े गायक आउंदे ने है ना, कमाल कर देंदे ने। तो दोस्तों जो तुसी अपना इंजॉय कर रहे हो फिल्म में, क्या बात है, मज़ा आ रहा शो करके। और ये फरमाइशी प्रोग्राम है तो जिहड़े साडे नाल नवे स्रोते जुड़े ने वो भी एक बार नंबर नोट कर लैन, क्योंकि साडे को वैसे मैसेज तो बहुत आए हुए हैं। नंबर है जी 9855101027 ते वट्सअप कर सकते हो। तो कहिंदे ने जवानी सिर्फ उम्र का नाम नहीं, ये सुपने देखने की हिम्मत, डिग के फिर उठन का जज्बा, हर नवे दिन नू गले लगाउन दा नाम है। हाय, जवानी की असल खूबसूरती चेहरे विच नहीं सगो सोच विच हुंदी है। जो सोच उची होवे, इरादे साफ होण, दिल विच इंसानियत होवे, तां जवानी अपनी चमक आप बयान कर देंदी है। सो दोस्तों सानू बहुत सारे सुनेहे आ रहे ने। अगला सुनेहा जिहड़ा है बहुत ही छोटा सुनेहा है वड्डा सुनेहा नहीं, कई वड्डे भेजदे ने। ये लिखते ने जी सवरन सिंह, पिंड दौले वाला, जिला मोगा तो, गीत चोरी चोरी फिल्म इतिहास तो। चेक नाओ, क्या बात है, अरे बड़ी प्रोफेसनल लैंग्वेज इन्होंने भेजी है, चेक नाओ। सो अगले बहुत सारे सानू मैसेज है, मैंने लगता मैं इकट्ठे पढ़ दें कि एक एक करके पढ़िए। चलो इकट्ठे पढ़ दें, कि गल है, मैं क्या कोई नाराज ही ना हो। सत श्री अकाल जी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो, यशमीत यशु, सौम्या सिंह, अविल सिंह, कोई भी गीत सुना दिओ जी, धन्यवाद। क्या बात है, जो कोई इन्नी गल कहें ना, कोई भी गीत सुना दो तो मैं क्या नज़ारे ही आ जाते हैं वैसे नहीं मजाक कर रहे हैं, तुम जिहड़ी मर्जी फरमाइश करोगे अं ही सुनावे। ओके, अगला मैसेज सानू आया, पिंड चंजेड़ी, तहसील खरड़, जिला SAS नगर। क्या बात है, साडे दोस्त नू एक नू PG चाहिए, माड़ा जा PG बारे भी दस्यो जरा मजाक कर रहा है। नगर तो लियाकत अली, निशा शाहिन, यासमीन, अरमान मलिक वालों सारे आकाशवाणी परिवार नू प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सानू तुसी कोई भी गीत सुना दिओ जी, धन्यवाद जी। ओके, तुसी दो वारी मैसेज भेजता, कोई गल नहीं जी, एक बारी ही बोलता।

एक मिठी जी मुस्कुराहट छड़ी होगी। जिंदगी की दौड़ भावें किन्नी भी तेज़ क्यों ना हो, अपने दिल लई कुछ पल हमेशा संभाल के रखो, क्योंकि मुस्कुराउंदा दिल ही जिंदगी खूबसूरत बनाउंदा है। इसे ही सोहनी सोच नाल मैं तुहाड़ा अपना साथी जोरावर सिंह तुहाडे कोल इजाजत लैंदा है। फिर मिलांगे नवे शो दे विच। सो अगला शो कुछ ही पलां दे विच तुसीं सुणोगे, हाँ जी, आरजे जोरावर सिंह दे नाल ही। जी जी बिल्कुल, नमस्कार।

ये गजल जनाब वसीम बरेलवी साहब की है और अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो असल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी गुस्ताखी की है, जिसकी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और जनाब वसीम बरेलवी साहब से भी। वो शेर असल में कुछ ऐसे है, किताब माजी के और आग उलट के देख ज़रा, किताब माजी के और आग उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा सफ़ा मुड़ा हुआ निकले। लीजिए अगला शेर पेश कर रहा हूँ।

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ये रेनबो चैनल है। दोस्तों, हर खूबसूरत महफिल वांग अज दी शामे गज़ल भी अपनी समाप्ति वाल वध रही है। उम्मीद है कि अज दे अशार गज़लां ते सुरां ने तुहाडे दिल नूं सुकून दिता होएगा ते तुहाडी रूह नूं एक मिठी जिही ताजगी बख्शी होएगी। याद रखो, जिंदगी हमेशा तेज़ रफ्तार नाल नहीं जीती जाती, कई बार ठहर के महसूस किए पल ही सब तो कीमती होंगे ने। इस सोहनी सोच नाल मैं आरजे जोरावर सिंह तुहाडे कोलों इस प्रोग्राम विचों इजाजत लैंदा हाँ। फिर मुलाकात होगी नवीं गज़लां, नवे अहसासां अते दिल नूं छू जाण वाले अशार नाल। चलदे चलदे एक शेर अर्ज है जी, खामोशियां भी कदे कदे गीत गा जांदियां ने, दिल नूं छूण वालियां गल्लां बिना आवाज़ दे भी सुनाई दे जांदियां ने। उदों तक अपना अते अपने परिवार का ख्याल रखो। आदाब, शुभरात्रि, रब रखा। ते हुण तो कुछ चिर बाद ही तुसी अगला शो सुनोगे।

एक बार फिर तो स्वागत करते हैं एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल। कहिंदे हन जदों शब्द दिल दी गल ना कह सकण, जदों शब्द दिल दी गल ना कह सकण उदों संगीत बोल पैंदा है। ते कुछ गीत अजिहे हुंदे ने जो सिर्फ सुने नहीं जांदे, ओह जिंदगी दे सफर दा हिस्सा बन जांदे ने। तुहाडा दिलों स्वागत है प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। मैं तुहाडा अपना साथी जोरावर सिंह अज दी इस महफिल विच सिर्फ सोलो गीत तुहाडा साथ निभाउणगे, जो कि हर वार दी तरह निभाउंदे ने ओह गीत जिन्हां विच इक आवाज़ है पर हज़ारां जज्बात हन। हर नगमा किसी दी मुस्कुराहट बनेगा, किसी दी याद नूं ताज़ा करेगा अते किसी दे दिल दी अणकही गल कह जाएगा। तो आओ कुछ पलां लई दुनिया दी भज दौड़ नूं पिछे छड्डिए, दिल दे दरवाजे खोलिए ते सुरां दे इस खूबसूरत सफर दा हिस्सा बनिए। उम्मीद है कि तुसी अपने बिस्तरियां दे उत्ते सज चुके होवोगे ते मध्यम मध्यम आवाज़ दे विच आओ असीं सारे सोलो गीत सुणदे हां। एक प्यार का नगमा है, क्योंकि सारे पासे प्यार ही पसर रहा है। तो चलो फिर इस प्यार नूं महसूस करदे हां, शुरू करते हैं एक प्यार का नगमा है, जिते हर सोलो गीत एक कहानी है, हर आवाज एक एहसास है, अते हर सुर दिल नूं छू जांदा है।

जिंदगी में रिश्ते बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना।

सो दोस्तों, समा इजाज़त नहीं दे रहा है। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते आकाशवाणी जलंधर दा ए रेनबो चैनल है। ते तुसी अपना जिहड़ा प्रोग्राम सुन रहे सही, जिहदा नाम तुसी जानदे ही हो, बड़ा ही खूबसूरत शो है जिहदे विच तुसी अज सारे दे सारे दिन विच तुसी जिहड़ियां पॉजिटिव गल्लां बातां सुनियां और इन्हां गल्लां बातां नूं तुसी अपनी जिंदगी दे विच जरूर अपनाउणा, यही साड़ी तुहानू एक गुजारिश है, एक बेनती है। सो दोस्तों, ये समा जिहड़ा आ इको जिक्का नहीं रहिंदा। इहदे उत्ते किसे ने बहुत खूबसूरत लाइना लिखियां ने। वो कहिंदे ने कि समा हमेशा इको जिहा नहीं रहिंदा, माड़ा वेला सबर सिखा जांदा है ते चंगा वेला शुक्र गुजार होना। इसलिए हर पल नूं मुस्कुरा के जियो, क्योंकि हर लंघदा लम्हा सानूं होर मजबूत बना जांदा है। वक्त की सब तो वड्डी खूबसूरती यह है कि यह बदलता जरूर है। इसलिए जे अज मुश्किल है तो कल एक नवी उम्मीद भी तुहाडा इंतजार कर रही है। सो दोस्तों, एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर का ई रेनबो चैनल है। तो 11 बज रहे हैं, साड़ी अज की सभा के सारे प्रोग्राम इतें खत्म होते हैं। सवेरे फिर मिलांगे नवे दोस्तों के नाल। उदों तक लई सानू दिओ इजाजत। शुभरात्रि, जय हिंद।